मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। खेत खलिहान में सुनिए वार्ता, मिर्च की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे दैनिक जीवन में मिर्च का काफ़ी महत्व है। इसका अनेक रूपों में इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम और आर्द्रता का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मिर्च की फसल अधिक तापक्रम और आर्द्रता पसंद करती है। यह प्रायः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पसंद करती है। लेकिन सब्जी जाति वाली किस्में कुछ कम तापमान में भी अच्छी होती है। मिर्च की फसल की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्षारीय भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, परंतु चूने की अधिक मात्रा हो तो भी इसकी सफल खेती की जा सकती है। यह कुछ हद तक अम्लीयता बर्दाश्त कर सकती है। भूमि का पीएच 5.5 से 6.5 होना अच्छा होता है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिर्च की बुआई सही समय पर करनी चाहिए। बिहार में मुख्य फसल हेतु बीज की बुआई का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना है और रोपण का समय जुलाई अगस्त है। बीजों को बीज स्थली में बोएं, जिसका ठीक समय अभी चल रहा है। बीज की बुआई के पहले बीज का उपचार थीरम या कैप्टान नामक दवा से निश्चित रूप से आप कर लें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम दवा मिलाकर उपचारित करें। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर भूमि पौधशाला के लिए पर्याप्त होगी। बीज बोने के लिए पौधशाला की ऊंचाई भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तथा उसमें पानी नहीं रुके इसकी भी व्यवस्था रखें। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें। बीज को उपचारित करना किसी भी हालत में नहीं भूलें, अन्यथा पौधे बीमारी से आक्रांत होकर मर जाएंगे और उपज में काफ़ी कमी होगी। अगर पौधे कमजोर हों तो यूरिया का उपरिवेशन कर तुरंत सिंचाई कर दें। पौधशाला में लगे पौधे को कम से कम 2 बार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर डाइथेन M45 नामक फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें ताकि रोग होने की आशंका नहीं रहे। कीट का आक्रमण दिखाई पड़े तो मेटासिस्टाक दवा के 0.1% घोल का छिड़काव भी 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें। हरी मिर्च के लिए फसल सालों भर उगाई जाती है। किसान भाई इसके लिए बुआई भी फसल लेने के समय के हिसाब से ही करें। सफल खेती के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का उपयोग करें। बीज की दर उसके अंकुरण और शुद्धता प्रतिशत पर निर्भर करती है। यदि बीज का अंकुरण 90 से 95% है तो प्रति हेक्टेयर 700 से 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। प्रायः मिर्च के पौधे के रोपण शाम के समय ही आप करें। तेज धूप के समय यदि आप रोपाई करती हैं तो पौधे की वृद्धि कम होती है और पौधे मुरझाने लगते हैं, उन्हें सूखने का भी भय रहता है। मिर्च में रोपाई के लिए उचित दूरी किस्म एवं ऋतुओं के अनुसार कम या अधिक होती है। साधारण तौर पर मिर्च की रोपाई पंक्ति से पंक्ति 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। अगर खेत में उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक है तो दूरी कुछ और अधिक आप बढ़ा सकते हैं। किस्मों के बारे में आप जान लें। मसाला के लिए मिर्च की प्रमुख किस्में हैं पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, G1, G2, G4, G5, पंतसी 1, आंध्र ज्योति, भाग्यलक्ष्मी, K2, पंजाब लाल। संकर किस्मों के लिए सोल्जर, क्रांति, दशहरा, गोदावरी, प्रीति, हीरो, BSS 202, BSS 414, तेजस्विनी अच्छी जातियां हैं। इनकी आप बुआई कर सकते हैं। कुछ कम कड़वी किस्में भी हैं जिसमें अर्क बसंत, अर्क गौरव प्रमुख हैं। संकर किस्म में भारत और इंदिरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खेत में खरपतवार।
0: खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता, मिर्च की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं

0: का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
1: एक बार महात्मा गांधी अपने आश्रम से निकल अपने सहयोगियों के साथ प्रातः भ्रमण में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जगह गंदगी देखी, किसी ने शौच कर दिया था। गांधी जी रुक गए, थोड़ी मिट्टी उठाकर ले आए और उस गंदगी पर डाल दिया। बाद में वे कहने लगे कि इस गंदगी पर जो मक्खी बैठेगी वह दूर दूर तक गंदगी फैलाएगी, किसी के मुंह पर बैठेगी इससे बीमारी फैलेगी। वे बड़े दुखी हुए। अपने सायंकालीन प्रार्थना सभा में भी उन्होंने इसकी चर्चा की और कहा कि हमें हर हालत में बाहर शौच का सिलसिला बंद करना चाहिए, खासकर महिलाओं को विद्रोह कर देना चाहिए कि वे उस घर में नहीं रहेंगी जहां उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। गांधी जी की विशेषता थी कि वे जो कहते थे खुद उसे पहले अपने जीवन में उतारते थे। वे सदा कहते थे कि हम जहां रहते हैं उसके और आसपास की सफाई भी हमें करनी चाहिए, इसलिए वे खुद और आश्रमवासियों के साथ शारीरिक श्रम करते, झाड़ू देते थे और शौचालयों की सफाई भी करते थे। आज प्रायः देखा जाता है कि सफाई के मामले में हम में से बहुत लोग लापरवाह हैं। खुद अपने घर की सफाई हम नहीं करते और इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य सफाई के मामले में जागरूक है वहां उसका घर साफ सुथरा रहता है और जहां सफाई रहती है वहां बीमारी भी जल्दी नहीं फटकती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति या परिवार सफाई को लेकर लापरवाह है वहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा होती है। गांधी जी का कहना था कि हमारा घर ही हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जिस घर में सफाई रहती है वहां समृद्धि भी आती है। समृद्धि केवल धन ही नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा विचार भी समृद्धि की पहचान है। इसलिए उनका यह कहना कि 24 घंटे में कुछ समय में अपने घर आसपास और अड़ोस पड़ोस की सफाई के लिए जरूर निकालना चाहिए। अगर सफाई अभियान सम्मिलित रूप से किया जाए तब वह ज्यादा असरदार होता है। गांधी जी जहां भी जाते थे अपने प्रवचन में जिन बातों की चर्चा करते थे उसमें सफाई भी शामिल होती थी। एक कार्यालय का बड़ा रंग रोगन किया गया। जब उस कार्यालय का निरीक्षण करने बड़े अधिकारी आए तो वह यह देखकर बड़े दुखी हो गए कि इस कार्यालय को रंग रोगन किए गए 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं। सीढ़ी के कोने में पान खाने वालों ने पीक थूक कर गंदा कर दिया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पान खाने के शौकीन बाथरूम में लगे हाथ धोने के बेसिन को भी नहीं छोड़ते, वहां भी पीक थूक दिया करते हैं। इस गंदी आदत से सारा माहौल गंदा हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि लोग घर में जमा कूड़े सड़क पर डाल देते हैं। थोड़ी दूर चलकर कूड़ेदान में कूड़ा डालने का कष्ट वे नहीं करते। नतीजा यह कि देखा देखी उनके आसपास के घरों में भी यही होने लगता है। परिणाम सारा मोहल्ला कूड़े की बदबू से परेशान हो जाता है। सड़क पर चलने में भी कठिनाई होने लगती है। अगर थोड़ा कष्ट उठाकर घर का कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाए तो ना तो बदबू की समस्या रहेगी और ना गंदगी की। यह भी देखा जाता है कि राह चलते हम खाली डब्बे या पैकेट फेंक देते हैं, केले के छिलके केला खाकर सड़क पर छोड़ देते हैं। कभी कभी इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अगर हम साथ में छोटा झोला रखें जिसमें खाली पैकेट या छिलके डालते जाएं और बाद में उन्हें कूड़ेदान में डाल दें तो ये समस्या आए ही नहीं। अब पॉलीथीन के इस्तेमाल से उत्पन्न दुष्परिणामों को ही ले लीजिए। इसके बाद भी हम इसका उपयोग करते जा रहे हैं। पॉलीथीन के उपयोग को रोकने के लिए सरकार कानून बना रही है, लेकिन कानून के पालन की सफलता इसी पर निर्भर है कि हम यह दृढ़ता के साथ फैसला ले लें कि हम किसी भी हालत में इसका उपयोग नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का भी यही उद्देश्य है कि सफाई के मामले में हम जागरूक हों।
0: अभी आपने सुना चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं चंद्रू आत्मा के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अभी आपने सुना चंद्र आत्मा के स्वर में भजन। अब आइए इन्हीं के स्वर में सुनते हैं एक और भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में प्रस्तुत है वार्ता, रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा। वार्ताकार हैं डॉक्टर संजय कुमार निराला।
1: रीढ़ की हड्डियों की शल्य क्रिया, इसे मेडिकल भाषा में स्पाइनल सर्जरीज कहते हैं एवं ऐसे सर्जन को स्पाइनल सर्जन कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में रीढ़ शब्द का इस्तेमाल किसी भी संस्था के सबसे महत्वपूर्ण चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। अतः इसी से समझा जा सकता है कि रीढ़ कितना महत्वपूर्ण अंग है। इसकी महत्ता इस कारण से बढ़ जाती है कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के बीच होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी संवेदनाओं में के शरीर के अन्य हिस्से से एकत्र कर ब्रेन को पहुंचाता है एवं ब्रेन से प्राप्त ऑर्डर को संचालित करने के लिए भिन्न भिन्न अंगों को पुनः संवेदना देता है। इस कारण से स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर के नियंत्रण में ब्रेन का मदद करता है। किसी कारणवश स्पाइनल कॉर्ड अगर यह कार्य प्रभावित हो जाए तो शरीर के निचले हिस्से से ब्रेन का संपर्क समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में नीचे का कोई भी संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता एवं मस्तिष्क का कोई भी ऑर्डर नीचे नहीं पहुंच पाता है। हमारे नर्वस सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण नर्व्स होते हैं, सेंसरी जो कहीं भी छूने से मस्तिष्क को पता चलता है, इसे टच या प्रेशर सेंसेशन भी कहा जाता है। मोटर, इस सिस्टम से हम अपने अंगों को खासकर हाथ पैर को कार्यशील देते हैं। ये अंग सीधे तौर पर हमारे कंट्रोल में होता है। हम जब चाहें उंगली हिला सकते हैं या हाथ पैर चला सकते हैं। विसरल, आंत, फेफड़ा, हृदय, लीवर, किडनी आदि विसरा कहलाते हैं। इन अंगों में नर्वस सिस्टम का जो संवेदना भाग होता है उसे विसरल नर्व कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ी होने पर इन तीनों तरह के नर्वस सिस्टम का कार्य प्रभावित होता है। इस तरह से मनुष्य की जीवन काफ़ी कठिनाई में आ जाता है। इससे निजात पाने में आजकल स्पाइनल सर्जरी या रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन काफ़ी कारगर उपाय बन गया। पहले के समय में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन काफ़ी जटिल था एवं परिणाम भी काफ़ी कम मिलते थे। आधुनिक चिकित्सा जगत ने काफ़ी तरक्की की है। आजकल स्पाइनल सर्जरी की क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हो गया है और अच्छे अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आवश्यकता कब पड़ती है? रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की आवश्यकता मुख्यतः रीढ़ की हड्डी की टीवी, डिस्क प्रोलैप्स, चोट के कारण नस का दबना या इसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर या अन्य ऐसे किसी भी कारण से निजात दिलाने के लिए किया जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के बीच स्पाइनल कॉर्ड दब जाता है और नर्व का कार्य प्रभावित होता है। किस किस प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं? रीढ़ की हड्डी में आमतौर पर आजकल जो ऑपरेशन प्रचलन में है वह है मिस, इसे मिनिमल इन्वेसिव स्पाइनल सर्जरी कहते हैं। इसमें काफ़ी छोटा छेद से रीढ़ की हड्डी में होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं और वहां से दबाव को हटाया जाता है। यह मुख्यतः डिस्क प्रोलैप्स में किया जाता है। इसके अलावा रूट कैनाल स्टेनोसिस या ऑस्टियोफाइट्स को हटाने में भी कारगर है। लैमिनेक्टोमी, यह काफ़ी पहले से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में इस्तेमाल होते आ रहा है और आज भी काफ़ी कारगर है। इसमें रीढ़ के पीछे हिस्से को लैमिना कहते हैं, उसे काट कर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं और रीढ़ की हड्डी के बीच स्पाइनल कॉर्ड में पड़े दबाव को आसानी से हटाया जा सकता है। प्रायः एक या दो लैमिना हटाने में कोई खास इंस्ट्रूमेंट या कोई इम्प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लैमिना काटने के बाद कुछ न कुछ इम्प्लांट लगाकर उसे स्थिरता दी जाती है, जैसे हार्ट सील रिंग, हैमिल्टन रॉड इत्यादि। इसके अलावा एंटीरियर एवं पोस्टीरियर डिकम्प्रेशन ऑफ कॉर्ड करते हैं, यह प्रायः टीवी के रोग में किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड टीवी के कारण दब जाता है और काफ़ी मात्रा में टीवी का पस कॉर्ड के चारों ओर दबाव बना लेता है। इसे हटाने के लिए रीढ़ के हड्डी के आगे एवं पीछे दोनों ओर से ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इससे रोगी को आगे की कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। इससे ट्यूमर को भी हटाया जा सकता है। नई ऑपरेशन पद्धति में स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी पॉपुलर है। इसे प्रायः रीढ़ की हड्डी में चोट के बाद क्षतिग्रस्त स्पाइनल कॉर्ड को पुनः जीवित करने के लिए किया जाता है। अन्य कारणों से भी स्पाइनल कॉर्ड में हुए क्षति में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु यह पद्धति अभी काफी स्थापित नहीं हो पाया है, किंतु हाल के दिनों में।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना वार्ता, रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा। वार्ताकार थे डॉक्टर संजय कुमार निराला। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बालीपुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, स्मृति संवाद एवं फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़ में उर्दू। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद शरशार अहमद। लोकगीत आप सुनेंगे 10:30 पर, कलाकार होंगी इंद्राणी सिन्हा। 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग, कलाकार होंगे कृष्णानंद पासवान। 1:30 पर आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक गंगा के सुर ताल की 11वीं कड़ी, लेखक होंगे अशोक अंचल, प्रस्तुतकर्ता होंगे दशमती चार्तर एवं अशोक शरण। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग आप सुनेंगे 3 बजे, कलाकार होंगे जसवंत सिंह। समूह स्वर में देशभक्ति गीत आप सुनेंगे 3:20 पर। 3:25 से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:30 पर। शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण में वार्ता, वन महोत्सव सप्ताह, हरित पहलों की माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर किरण कुमारी। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, कलाकार होंगे रंजीत कुमार पाठक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो नाटक मेरी खामोशी। इस रेडियो नाटक को आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। लेखिका होंगी श्रीमती दीपशिखा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अरुण कुमार पासवान। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गीत गजल कार्यक्रम भावगीत।

0: कार्यक्रम विवरण में अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडो

0: इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 वर्षादारभ्य भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिक सहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जक सांस्कृतिक प्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीन सभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिक सम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वय समूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायण कथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिक भक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 जनाः निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचारमेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रम शिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहां पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आज के दिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये दैनिक कार्यक्रम है, इसे हम दो पड़ाव में सुनते हैं, यानी कि पहले पड़ाव में हम आपको सुनवाते हैं रसरंग, और रसरंग में आज हमारे साथ गायक कलाकार हैं अनुपमा कुमारी। साथ ही साथ 7:20 पर आज के दिन यानी मंगलवार के दिन हम आपको सुनवाएंगे स्मृति संवाद में भेंटवार्ता एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से। भेंटवार्ताकार होंगे श्री राम प्रसाद पंडित, भेंटकर्ता होंगे कुसुमाकर दुबे। और साथ ही साथ कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में, यानी कि हम आपको सुनवाएंगे दूसरे पड़ाव में फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं गायक कलाकार अनुपमा कुमारी के द्वारा गाया यह भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रसरंग में गायक कलाकार अनुपमा कुमारी को

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम शिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारी को।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम शिला, और आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं मौसम सूचना के बारे में। श्रोताओं, आपको बता दें, मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 7 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। बांका, गया, रोहताश एवं कैमूर में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्व हवा चलने का भी अनुमान है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं रसरंग में गायक कलाकार अनुपमा कुमारी को।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए रसरंग आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार अनुपमा कुमारी को।

0: अभी आप सुन रहे थे रेस्टोरेंट में गायक कलाकार अनुपमा कुमारी को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है स्मृति संवाद में भेंटवार्ता एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से। भेंटवार्ताकार हैं श्रीनाम प्रसाद पंडित, भेंट करता है कुसुमाकर दुबे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज स्मृति लेख कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राम प्रसाद पंडित। आप सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है राम प्रसाद जी।
2: जी,
1: अपने श्रोताओं के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पुलिस विभाग में किस नौकरी में थे।
2: मैं सब इंस्पेक्टर से रिटायर किया।
1: जी, आपने कब अवकाश ग्रहण किया।
2: 1 मार्च 2008 में बाका से सेवानिवृत्त हुए।
1: मतलब 7 साल से अधिक हो गया।
2: जी जी,
1: आपको सेवानिवृत्त हुए। चलिए, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, लंबा शरीर है, चरहरा है, बहुत दुबले पतले हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है।
2: जी नहीं, एकदम
1: फिट।
2: फिजिकल संबंधी में मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। जैसे 50 साल पहले मैं था, अभी भी वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ।
1: बात, अभी आपकी उम्र तो 67-68 साल हो ही गई।
2: जी जी, 68 से ऊपर।
1: तो 68 से ऊपर में भी आप इतना फिट हैं। चलिए, भविष्य के लिए भी बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत फिट रहिए, ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई।
2: मेरा जन्म स्थान अकबरनगर है।
1: जी,
2: उसके बाद शुरू में मिडिल स्कूल अकबरनगर श्रीरामपुर से पास किया।
1: जी जी,
2: उसके बाद जो है कृष्णानंद हाई स्कूल सुल्तानगंज से मैं मैट्रिक किया।
1: अच्छा,
2: 1964 ईस्वी में।
1: जी,
2: उसके बाद फिर प्री किया वहीं पर। उसके बाद जो है मैंने ITI किया।
1: जी,
2: मुंगेर से।
1: जी,
2: ITI करके जैसे ही पास हुआ, बस मुंगेर में पुलिस की बहाली थी, मुझे शौक था, बस वहाँ जाकर दौड़ धूप किया, बस सब चीज़ में सेलेक्ट हो गए।
1: अच्छा,
2: बस मैं सीधे कांस्टेबल में ज्वाइन कर लिया।
1: और कांस्टेबल के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
2: बहुत जल्दी मैं प्रमोशन कर गया। 11 साल मैं ASI में रहा, उसके बाद 24-25 साल तक सब इंस्पेक्टर में रहा। मैं बहुत अच्छा अच्छा काम किया।
1: अच्छा, क्या क्या अच्छा अच्छा काम आपके द्वारा हुआ बताइए।
2: मतलब जहाँ क्राइम कंट्रोल नहीं होता था, SP मेरी पोस्टिंग कर देती थी।
1: अच्छा,
2: और जाते जाते 15 दिन में क्राइम कंट्रोल कर देते।
1: वाह।
2: इवन बेगूसराय में जो कंट्रोल जिला था उस समय,
1: जी जी,
2: 84 में ज्वाइन किए थे।
1: जी,
2: उस समय DM और SP हमको नाम से जानते थे। जब अच्छा, कोई क्राइम कंट्रोल नहीं होता था तो बोलता था RP पंडित को दो ये ड्यूटी, उनसे पूरा हो जाएगा। तो मैं जो है, मैं SP साहब को कह दिया था कि जो भी जिला में असंभव ड्यूटी हो, रात दिन 24 घंटा हमसे ले सकते।
1: अच्छा, तो बेगूसराय में आप शहर में ही रहे, किसी ब्लॉक वगैरह में रहे।
2: नहीं, बेगूसराय टाउन थाना में थे।
1: जी,
2: उसके बाद और 3-4 जगह देहात थाना में थे, ऑप्शन इंचार्ज। गढ़हरा में ऑप्शन इंचार्ज थे, फुलबरिया में ऑप्शन इंचार्ज थे।
1: जी,
2: खुदाबनपुर में थे।
1: जी,
2: ऐसे करके बेगूसराय में 11 साल
1: 11 साल रहने का मौका मिला। तो इस तरह से अब अपराध नियंत्रण के लिए जाने जाते रहे, मान लीजिए, तो आपको अपराधियों की ओर से बहुत चुनौतियाँ भी मिलती होंगी।
2: उसमें अकेले हम चले जाते थे।
1: जी,
2: और अकेले अरेस्ट करके लेके चले आते।
1: हाँ,
2: उस समय इतना पुलिस पर हमला नहीं था।
1: जी,
2: और इधर अपराधी जो बेलगाम हो गया, अनेक तरह के अपराध हो गई उस समय।
1: जी जी,
2: ज्यादा अपराध नहीं था, हाउस रोबरी था।
1: जी,
2: रोड रोबरी एकदम कम।
1: जी,
2: मर्डर बहुत कम, मारपीट मिसलेनियस होते रहते।
1: जी जी जी, आपका सूत्र क्या होता था, आप कैसे अपराध पर नियंत्रण कर लेते थे बहुत जल्दी।
2: वो ऐसा था ना, मेरा भीतर से मनोबल हाई था।
1: जी,
2: मैं काफी हेल्दी था, 100 kg वेट उठाता था।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जिस थाना में ज्वाइन किए, कसरत वगैरह देख करके लोग हैरान हो जाता था।
1: हाँ।
2: उसे अपराधी सब मेरे मार के डर से जिला छोड़ के भाग जाता था।
1: अच्छा, ये बात है।
2: हाँ।
1: कि मतलब ये आ गए हैं श्री राम जी, तो अब हमको
2: हाँ,
1: बहुत मुश्किल है।
2: हाँ। अच्छा। जितने अच्छे आदमी थे
1: जी,
2: वो आते थे मेरे थाना में, तो उसको हम बैठाते थे कुर्सी पर।
1: जी,
2: और बैठ करके उनको निडर बनाते थे कि निडर बनो और बोलो समस्या क्या है।
1: हाँ।
2: और तुम्हारा समस्या के समाधान के लिए मैं हूँ।
1: हम्म।
2: और बेहिचक बिना पैर भी के आओ, बात करो।
1: जी।
2: हाँ। मैं जब मेरा ट्रांसफर हो जाता था।
1: जी।
2: तो वहाँ मेरे लिए गरीब और इंसान रोते थे।
1: अच्छा।
2: अपराधी खुश होते थे।
1: अच्छा, तो आपने अपनी नौकरी में पूरी ईमानदारी से अपने काम को निभाया
2: जी जी।
1: तो और कहाँ कहाँ आप पदस्थापित रहे?
2: इसके पहले मैं सीआईडी में रहा 3 साल तक
1: जी।
2: 3 साल सीआईडी में रहा तो उसमें नक्सलाइट शुरू हुआ था
1: जी जी
2: 93 में
1: जी।
2: तो उसमें मेरा पोस्टिंग हो गया था झारखंड में
1: जी,
2: जगदीशपुर गिरिडीह
1: जी।
2: तो वहाँ पर 6 महीना रहे
1: जी।
2: तो उसके बाद फिर सीआईडी में ही मेरा गुड्डा बदली हो गया
1: जी जी।
2: उसके बाद जो है
1: जी
2: फिर पुलिस में हम आ गए।
1: अच्छा,
2: तो पुलिस में हम बाका पुलिस में हम ज्वाइन किए
1: जी जी।
2: तो बाका में कटोरिया थाना में प्रभारी रहे, सुइया में रहे, फिर लास्ट में बाका टाउन थाना से हम रिटायर किए।
1: अच्छा, आपके परिवार में और कौन?

0: पत्नी के साथ आज 20 बरस से भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने एक भी जगह भारत में बचा नहीं है।
1: वाह, तब तो ये अच्छी बात है कि आप घूमने पे भी ध्यान देते हैं, पर्यटन पर ध्यान देते हैं। आप भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमे तो आपको कैसा लगा, अपना इलाका और भारत का दूसरा सब हिस्सा जब आप जाते हैं?
0: जैसे अपने बिहार से बाहर जाते हैं तो साउथ इंडिया वगैरह में गए
1: जी,
0: या वेस्टर्न में गए, ईस्टर्न में गए, तो उधर अनुशासन ज़्यादा अच्छा
1: है। अच्छा जी।
0: और लोगों में ज़्यादा अशांति नहीं
1: जी,
0: और बड़ी लोग रिगार्ड करते हैं और बढ़िया से बात करते हैं। और जैसे अपने यहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन उतना अनुशासन नहीं है, कोई चीज़ पूछिएगा तो यहाँ झुझला के बोलेंगे, लेकिन उधर जो है ना बहुत बढ़िया से, औरत हो लड़की हो कोई
1: जी,
0: भी हो, खूब बढ़िया से बतावेंगे
1: जी। तो हालांकि फिर भी आपको पूरी दुनिया घूमने के बाद भी अपना गांव सबसे प्यारा लगता
0: सबसे
1: होगा?
0: प्यारा लगता है इसलिए कि वहाँ की मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं।
1: हाँ ये बात है। और अभी अपने जैसा कि आपने कहा आप सुबह सुबह टहलते हैं, तो उसके बाद आपकी दिनचर्या में भोजन पानी कैसा होता है?
0: जैसे सवेरे नित्य क्रिया से फुर्सत होकर के मॉर्निंग वॉक करके गाय को दूह करके फुर्सत जब पाए
1: जी
0: थोड़ा सा हम योगा करते हैं।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात
0: हाँ,
1: है।
0: ऊपर छत पर चले गए, योगा किए खूब 10 मिनट 20 मिनट,
1: जी
0: उसके तो वहाँ से फुर्सत पाए तो मुँह धोकर के नहा लिए, नहा के मैं पूजा करता हूँ। 10 मिनट पूजा के बाद मैं 3 रोटी दाल सब्जी, दोनों टाइम रोटी खाता हूँ, भात
1: अच्छा
0: कभी कभी खाते हैं।
1: जी,
0: और मैं जन्म लिया हूँ अभी तक होश जब से संभारे हैं चाय पान छुआ ही नहीं अभी तक,
1: नशीली चीजों से आप
0: कुछ
1: दूर
0: नहीं,
1: हैं
0: चाय तक नहीं पिए अभी तक नहीं पिए।
1: जी।
0: हाँ, उसके बदले में पानी खूब पीते हैं, हॉर्लिक्स दूध पीते हैं।
1: अच्छा
0: और हमारा है कि रोना जिंदगी में सीखा नहीं
1: जी,
0: अभी भी नहीं, और आलस मेरे जीवन में कभी आया नहीं।
1: तो आप बचपन से ही कसरत वगैरह पर ध्यान देते रहे?
0: काफी फुटबॉल वॉलीबॉल तैरना बॉक्सिंग हो ये सब, वेट लिफ्ट 100 kg वेट किए
1: जी
0: हैं हम ट्रेनिंग में, सब
1: जी
0: इंस्पेक्टर के ट्रेनिंग में।
1: जी
0: और गंगा जी मेरे गांव के किनारे में है तो वहाँ पर जो है भादों में जब 20 फीट पानी रहता है उसमें लोटा बाल्टी डाल के नीचे से निकाल लेते थे।
1: अच्छा, तो ये भी है ना, गोताखोर वाला काम भी किए, तैरने का भी काम किए
0: अभी भी सब चीज़ से शौक है हमको
1: जी।
0: अभी भी।
1: तो आपके जीवन में ये सब तो बहुत ही अच्छी बात है। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप, नई पीढ़ी जो आपके गांव के आसपास है?
0: जी, उन लोगों में तो सबसे पहले मैं यही प्रेरणा दूंगा
1: जी
0: कि आदमी को सबसे पहले अनुशासन में होना चाहिए। अनुशासनहीन जीवन जो है उसके पतन की ओर ले जाता है,
1: जी
0: और अनुशासित आदमी और माता पिता की जो कदर करता है, सेवा करता है, वो महान हो जाता है।
1: जी
0: और मैंने भी माता पिता काफ़ी सेवा किया,
1: जी
0: अनुशासन में रहा, जिसका परिणाम है कि हम काफ़ी खुशहाल और शांति से जी रहे हैं।
1: जी
0: जी
1: तो ये मुख्य बात है। तो अनुशासन में रहें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें, और व्यायाम पर
0: जी
1: ध्यान दें, टहलने घूमने पर ध्यान
0: जी
1: दें।
0: स्वास्थ्य पर सचेत रहे, स्वास्थ्य नहीं होगा तो सारे धन बेकार हो जाए, इसलिए स्वास्थ्य ही धन है।
1: जी, तो आज के युवा आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं।
0: जी,
1: ईमानदारी के साथ साथ जितने भी गुण आपने कहे वो सब की प्रेरणा उनको मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं आपसे बातचीत से।
0: जी,
1: और हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा। राम
0: जी।
1: प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना स्मृति संवाद में भेंट वार्ता, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से। भेंट वार्ताकार थे श्री राम प्रसाद पंडित, भेंट करता थे कुसुमाकर दुबे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में, यानी कि आज की तारीख है 7 जुलाई, और 7 जुलाई को हमारे इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं इसके बारे में जानते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि साल 1656 ईस्वी में सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह जी का जन्म हुआ था। साल 1896 में आज के दिन फ्रांस के प्रसिद्ध लुमियर ब्रदर्स ने मुंबई के वॉटसन होटल में पहली बार सिनेमा का प्रदर्शन कर भारत में सिनेमा की नींव रखी थी। साल 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना यानी दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। साल 1955 में

सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। साल 1981 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जाबाज कैप्टन विक्रम बत्रा पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। श्रोताओं, आपको बता दें कि विश्व स्तर पर आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, अगर हम बात करें तो आज हम अपने देश की महान विरासत और उन सभी वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने इस धरा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारी सेना न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि हर विपदा के समय समाज और देश के हर कोने में खड़े होकर निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बनी हुई है। हमारा देश भारत विविधता में एकता की मिसाल है और इसी एकता को मजबूत बनाने में हम सभी का योगदान है। आइए हम सब मिलकर अपने वीर जवानों के बलिदान को याद रखें, उनके आदर्शों पर चलें और अपने देश की ओर और भी मजबूती और भी गौरवान्वित करें।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं रेल सूचना के बारे में। आपको बता दें, गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 7:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, यह गाड़ी अपने सही समय यानी 8:15 पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है आगमन का 8:05 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 4:10 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, जिसका सही समय है आगमन का 8:37 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन चलती है और आज का दिन है मंगलवार, और आज के दिन यह गाड़ी 8:55 पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का 9:00 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 15 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्योल इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का 9:35 पर और यह गाड़ी अपने समय से 30 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 11:55 और यह अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में। सबसे पहली सुर्खी है कि पीजी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 9 से 3 केंद्र बने। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने पीजी के दूसरे सेमेस्टर सत्र 2025-27 की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 9 से 20 जुलाई तक एक पाली में होगी। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो सीईटी बीएड फर्स्ट राउंड में 10,000 से ज़्यादा सीटें कंफर्म। राज्य के बीएड कॉलेजों में सत्र 2026-28 के लिए 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यक्रमों में नामांकन की रफ्तार तेज हो गई है। प्रथम चरण की काउंसलिंग के तहत अब तक 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ₹3,000 देकर अपना सीट कंफर्म कर लिया है। वहीं इनमें से 2,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी संबंधित कॉलेजों में पहुंचकर अपना नामांकन भी पूरा कर चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बने हेल्प डेस्क पर रोजाना सुबह 10 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने का काम चल रहा है। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि भोलानाथ पुल का काम लटका, पेयजल योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त। शहर की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर सोमवार को जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने कड़ा रुख अपनाया। उनकी अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जलापूर्ति, पुल निर्माण, सीवरेज और बाढ़ सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि यात्रियों को रेल वन ऐप की दी जानकारी। भारतीय रेलवे यात्रियों को सरल, सुरक्षित और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मालदा मंडल की ओर से सोमवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल वन ऐप के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्तिक सिंह के पर्यवेक्षण में आयोजित हुआ। और श्रोताओं, आपको बता दें समाचार पत्रों की सुर्खियों में आखिरी सुर्खी जो है वो है मायागंज और आदमपुर फीडर आज 2 घंटे बंद रहेगा। बिजली लाइन के रखरखाव कार्य को लेकर मंगलवार को मायागंज और आदमपुर फीडर बंद रहेगा। अभियंता के अनुसार मायागंज फीडर सुबह ग्यारह बजे से दोपहर 1 बजे तक और आदमपुर फीडर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान संबंधित इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उपभोक्ताओं से जरूरी कार्य पहले ही निपटाने की अपील की गई है। श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म यारियां से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में, और मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हम इस कार्यक्रम से लें आप सभी से विदा, क्योंकि वक्त के आगे कौन नहीं झुकता। तो श्रोताओं, जाते जाते बस यही कहूंगा कि आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहिए। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। मैं केशव लेता हूं आप सभी से इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न

0: चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: हर हर महादेव।
3: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
4: क्रेश,
5: चेश
3: और बाल्टी बॉय।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
0: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
5: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
5: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
7: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशिया

0: एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
5: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samanavaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundip Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
6: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals and of course educational and health sectors.
5: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's three-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Shandip Bandashgupta, Akashvani News, Jakarta.
4: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive. For 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8.5 lakh cooperatives across the country, this is a day they had been waiting for over the past 75 years. Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the Government of India. This decision by the Prime Minister has served to elevate the country's cooperative movement to a new stage. He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a Chief Executive Officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir POK, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if the conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. More from our correspondent.
3: The committee has called upon residents throughout POK and the members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9. Police brutality by Pakistani forces has intensified on Sunday against the people protesting against the severe crackdown by Islamabad and the sweeping arrest of more than 600 civil rights activists in Pakistan-occupied Kashmir, with reports of shelling, firing and clashes emerging from several parts of Muzaffarabad. Thousands of people took to the streets on demanding an end to the blockade, restoration of communication services, uninterrupted supplies of food and medicines, the release of detained leaders and implementation of a 38-point written agreement. The demonstrations have intensified since Pakistan banned the JAAC under the Anti-Terrorism Act. Protest organizers allege that more than 600 workers and political leaders have been arrested, while authorities have imposed an economic blockade by restricting the supply of food, flour and essential medicines. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
4: External Affairs Minister S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman, from July 5th to July 10th. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the King and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Dr. Jaishankar also interacted with the members of the Indian community in Bahrain. During the ongoing visit, Dr. Jaishankar has been meeting his counterparts and top leaders of the Gulf countries to enhance bilateral relations and exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Heavy rains continue in the coastal part and the Ghat areas of Maharashtra, with a red alert being sounded for Palghar, Raigad and Ghat areas of Nasik and Pune for today. Coastal districts, including Mumbai and North Maharashtra districts, have been given orange alert with the possibility of moderate to heavy rains in certain areas. Authorities have taken precautions to ensure the safety of citizens, with NDRF and SDRF teams on high alert in sensitive areas. A report.
7: The Ghat areas of Maharashtra have seen intense rainfall, with Lonavala recording more than 600 mm of rain. Many tourist places have been closed. In Nashik district, authorities have sounded maximum alert following forecast of cloudburst like rainfall. Following the alert, schools and colleges in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Palghar, Raigad, Ratnagiri district and sensitive ghats of Nashik, Satara, Pune will remain closed today. Mumbai-Pune expressway has been partially opened for traffic after being disrupted following a landslide. With reports of Sangeeta Godbole, this is Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
4: Indian wrestlers finished with an impressive haul of 20 medals, including 4 gold, 7 silver and 9 bronze at the Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya, Thailand. India ensured consistent podium finishes across multiple weight divisions throughout the championship, securing top 3 overall team rankings in both women's wrestling and men's freestyle. In women's wrestling, India finished second on the podium with 184 points, falling just short of champions China with points, while outclassing third place Japan with 142 points. The Indian men's freestyle team finished third overall in the team standing with 152 points, behind winners Kazakhstan with 170 points and runners-up Iran with 164 points. Leading the Indian charge in the women's division were Parveen in 50 kg, Muskan in 53 kg and Kajal in 76 kg, who all clinched gold medals in their respective weight classes. In the men's freestyle, Sumit Kumar Lakshman Bharaskar captured the solitary gold medal for India in the 70 kg category, prevailing 13-7 in a high-scoring thriller against Kazakhstan's Sunkar Sedakmet. In football, Spain stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 at the Dallas Stadium last night. Mikel Merino scored in the first minute of second half stoppage time to secure the victory. Meanwhile, Portugal superstar Cristiano Ronaldo has announced he won't be returning for the next FIFA World Cup following his nation's round of

0: In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register first win under his captaincy. England, on the other hand, have named an unchanging playing 11 for the third T20 international. Earlier, host England defeated India by 4 wickets in the second T20 international on Saturday in Manchester. Opting to bat, India scored 190 for 7 in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust Chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines, Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president especially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency chargesheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे

0: को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो सदर पराबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वहां होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क्याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंडोनेशिया का पहला दो तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तीन मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदाज गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आजादी की 100 साला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क्याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नजरअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि ये वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की सुलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले

0: में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांचे गोविंद देवगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाज़ाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़यात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमारी महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की टीम को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमूई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में एनआईए की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पाटाया में मुनक्किदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
5: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
4: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
5: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
4: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। ऐसे रैयतों के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए अब अंचलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में अंचलवार समीक्षा करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख, चौकीदारी रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। यह कर्मचारी आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: श्री शाह ने एक राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा शुरू करने की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को मान्यता दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी 4वें वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण 4वें वर्ष में

0: इस बारे में राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों को इसके अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क या सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्र निर्माण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन उपलब्ध भूमि और आवश्यकताओं के आधार पर किसी पार्क या सड़क का चयन करेगा। आवश्यकता पड़ने पर नए पार्क या सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अररिया जिले के फॉरबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गौरतलब है कि आज लोगों की समस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति शिकायत या समस्या के लिए सहयोग हेल्पलाइन 1100 या सहयोग पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल नामांकन के पहले दिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र सहनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा, वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। उपचुनाव के लिए राजद ने रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनडीए की ओर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इस सीट से जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में मंत्री अशोक चौधरी का बयान उनका निजी राय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह पार्टी या सरकार की राय नहीं है।
1: उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए।
0: प्रदेश में पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती अब ई नीलामी सह निविदा का माध्यम से कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस कार्य की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को देने का निर्णय लिया है। खान और भूतत्व विभाग के अनुसार अब खनन पट्टों का आधार मूल्य पहले की तुलना में अधिक होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खनन पट्टे में उपलब्ध पत्थर की वास्तविक मात्रा के आधार पर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इससे ई नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मैं आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पर्यटन के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 15 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकारी किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क में रहने के मामले में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2: जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके 2 और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में रक्त अनुसंधान भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस संबंध में एक थाना में कांड दर्ज किया गया है जो BNS की धारा 113(3)(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(26) के अंतर्गत दर्ज करते हुए रक्त अनुसंधान में इनके जो भी सहयोगी हैं और इनका जो भी नेटवर्क है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
0: आरोप है कि मिल्की खानपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में था, जो बिहार ATS से जुड़े एक मामले में भी नामजद है। निगरानी जांच की टीम ने धनरुआ अंचल कार्यालय के लिपिक शैलेश कुमार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिपिक परिमार्जन प्लस के तहत जमीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के लिए रिश्वत ले रहा था। भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रदेश में शराबबंदी कानून समाप्त होने की भ्रामक खबर फैलाने के मामले में आरा के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि भ्रामक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने भाषण की आवाज को AI से एडिट कर यह झूठा दावा किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। टीम में पहली बार तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को भी शामिल किया गया है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे में 3 T20 मैच खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज नॉटिंगहम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चंपत राय को राम राम, कृष्ण मोहन को कमान। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे। प्रभात खबर लिखता है, BRO के फंड के गबन से जुड़े मामले में बिहार समेत 11 राज्यों में CBI का छापा। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार के मॉडल स्कूलों में शामिल की जाएंगी राजस्थान की विशिष्टताएं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, मानहानि केस में बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को किया तलब। आज अखबार की सुर्खी है, सक्षमता पर पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। और अब अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4वें वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म सत्यमेव जयते 2 से। इस गीत को आवाज़ दिया है ज़ारा एस खान एवं देव नेगी ने। गीतकार एवं संगीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म धूम 2 से। इस गीत को आवाज़ दिया है सुनिधि चौहान ने, गीतकार हैं समीर और संगीत है प्रीतम का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म बचना ए हसीनों से। इस गीत को आवाज दिया है सुनिधि चौहान, राजा हसन एवं हार्डकोर ने। गीतकार हैं अन्विता दत्त गुप्ता और संगीत है विशाल शेखर का। श्रोताओं, इस गीत से पहले आइए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म गुंडे से। इस गीत को आवाज दिया है नेहा बहसीन एवं बपी लहरी ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है सोहेल सेन का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म टशन से। इस गीत को आवाज दिया है सुनिधि चौहान एवं पीयूष मिश्रा ने। गीतकार हैं अन्विता दत्त गुप्ता और संगीत है विशाल शेखर का।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्म-ए-उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहम्मद सरशार अहमद।

सहरा को फिर से गुलिस्तां, हम ऐसी नसी में सहर ढूंढते हैं। लिए आशियानों की आवारा पंछी, लिए आशियानों की आवारा पंछी, न जाने

न धन मांगता हूँ, नजर मांगता हूँ, दुआओं में तुझसे असर मांगता हूँ, दुआओं में तुझसे असर मांगता हूँ। शेर अर्ज है, समात फरमाएंगे। घटा काली काली ये रात भी अंधेरी, घटा काली काली ये रात भी अंधेरी, न छूट जाए साथी कमर मांगता हूँ, न छूट जाए साथी कमर मांगता हूँ, न धन मांगता हूँ नजर मांगता हूँ, दुआओं में तुझसे असर मांगता हूँ। शेर अर्ज है, गिरा दो ये पर्दा जो है नफरतों का, गिरा दो ये पर्दा जो है नफरतों का, हो जमाना ए मिल्लत खबर मांगता हूँ, हो जमाना ए मिल्लत खबर मांगता हूँ। शेर है,

ये जो मंजिल सफ़र मांगता हूँ, मिलेगी जो मंजिल सफ़र मांगता हूँ। शेर अर्ज है, मुलाजा फरमाएंगे, शायद पसंद हो। न फूलों से दूरी, न खारों से शिकवा, न फूलों से...

तो घर मांगता हूँ, नहीं जिसको घर है। ये मख्ताब समाज फरमाएंगे हजार।

हालात अच्छे नहीं हैं। शेर अर्ज़ है, मेरे दिल की राहों में जुल्मो सितम है, मेरे दिल की राहों में जुल्मो सितम है, सहमे सहमे कदम, सहमे सहमे कदम।

जिनको रखे, खुदा जिनको रखे वो मरते नहीं हैं, खुदा जिनको रखे वो मरते नहीं हैं। शेर अर्ज है, देखिए। ये चर्चे ये चरखे कोहन क्यों सितम ढा रहे हैं, ये चरखे को

अभी आपने सुना साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज में उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मोहम्मद सरशार अहमद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं इंद्राणी सिन्हा।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं इंद्राणी सिन्हा। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये शिव भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं इंद्राणी सिन्हा। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये झूमर।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं इंद्राणी सिन्हा। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये विवाह गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं इंद्राणी सिन्हा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। गायक कलाकार थी इंद्राणी सिन्हा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 11 बजने ही वाले हैं। अगला कार्यक्रम आप कुछ ही देर में सुनेंगे।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत आपने सुना रूप कुमार राठौर एवं विशाल मिश्रा की आवाजों में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक और मिथुन। धड़क टू फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में। रश्मि विराग का गीत है, संगीतकार हैं जावेद मोशिन।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म का गीत सुनिए अमित मिश्रा, श्रेया घोषाल, नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजों में। जयराज का गीत है और संगीतकार

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: एक बार फिर स्वागत है अंतराल के बाद। आइए सुनते हैं सोनू निगम और कृष्णकली साहा की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म परम सुंदरी से। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

दिस इज माही। गीतकार सागर, संगीतकार थे हनी बने। और कार्यक्रम के अंत में सुनिए मैथिली ठाकुर के स्वर में कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म है औरों में कहां दम था। मनोज मुंतशिर का गीत है, धुन बनाई है प्रीतम ने।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, आज का जो ये गुलदस्ता है ना, उसमें हम आपको ले चलेंगे उस संगीतकार की दुनिया में जिनके सुरों में दर्द भी था, मोहब्बत भी, और एक ऐसा जादू जो आज भी बरकरार है। और आज हम बातें करेंगे संगीतकार मदन मोहन जी की। उनके संगीत में कुछ तो था जो सीधा दिल से निकलता था और दिल में ही उतर जाता था। 25 जून 1924 को इराक के बगदाद में जन्मे मदन मोहन जी बचपन में ही भारत आ गए। पिता थे पुलिस अधिकारी और उनका तबादला हुआ करता था, लेकिन संगीत से मोहब्बत तो उन्हें बचपन से ही थी। वे पहले एक गायक बनना चाहते थे, रेडियो में बतौर अनाउंसर और गायक भी जुड़े। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए उन्होंने बेगम अख्तर, तलत महमूद जैसे फनकारों को सुना और यहीं से उनके सुरों को नई उड़ान मिली। सन 1950 का दशक और इसी में उन्होंने फिल्मों में संगीत देना शुरू किया, लेकिन असली पहचान मिली 1960 के दशक में, जब उन्होंने ऐसे नगमे रचे जिनमें जज्बात थे, नज़ाकत थी और अलहदा अंदाज था। उनका संगीत कठिन होता था, लेकिन सुनने में बेहद आसान और दिल को छू लेने वाला। तो एक गीत इस बीच हम सुनते हैं, फिल्म है वो कौन थी, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन। आइए सुनते हैं लग जा गले।

पता है दोस्तों, कभी कभी लगता है कि दर्द की जब कोई भाषा नहीं थी, तब मदन मोहन ने उसे संगीत दिया। क्योंकि उनकी धुनों में सिर्फ सुर नहीं, एक पूरी जिंदगी बोलती है। कभी कभी आंखों आंखों में बात करती है, तो कभी चुपचाप रोती हुई रात बन जाती है। आज जब हम गज़ल की बातें करते हैं तो बेगम अख्तर, मेहदी हसन जैसे नाम याद आते हैं, पर हिंदी फिल्म संगीत में गज़ल को जो संजीदगी और मिठास मदन मोहन ने दी वो दुर्लभ है। उनके लिए गज़ल सिर्फ एक शैली नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक अनुभव था। फिल्म जेलर में तलत महमूद की आवाज़ में उनकी गज़ल ए गम ए दिल क्या करूं, आज भी आप सुने ना तो सुनने वालों को मानो ठहरा देती है। और जब हम मदन मोहन साहब की बातें करते हैं तो लता मंगेशकर जी का साथ हमेशा याद आता है, क्योंकि मदन मोहन और लता मंगेशकर जी का जो साथ था ना, जैसे शब्द और अर्थ का रिश्ता हो। लता जी ने हमेशा कहा, मदन भैया मेरी आवाज़ को जानते थे और उससे भी ज़्यादा उसमें जो मेरी रूह थी उसे जानते थे। तभी तो जब उन्होंने वो कौन थी फिल्म के लिए नैनावर से रिमझिम रिमझिम या लग जा गले रिकॉर्ड किया था ना, तो स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। हर कोई जानता था कि एक जादू रिकॉर्ड हो चुका है। सचमुच इस रिकॉर्डिंग के बाद लता जी के एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि हर कोई बिल्कुल चुप था। काफ़ी देर तक कोई बात ही नहीं हुई। हर किसी को लग रहा था कि ये कौन सा गीत, कैसा गीत रिकॉर्ड हुआ है, इतना प्यारा गीत था। लेकिन पता है कि मदन मोहन साहब को अक्सर ये सुनने को मिला कि आपका संगीत बहुत ज़्यादा ही क्लासिकल है, जनता नहीं समझेगी। पर पता है, वो ना झुके ना बदले, वो हमेशा कहते रहे कि मुझे वो कर

सुनना है जो दिल कहता है, भीड़ क्या सुनेगी वो बाद में देखा जाएगा। और यही वजह है कि भले ही उन्हें बहुत सारे पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन दिलों का प्यार मिला। वो अमर हुए अपने संगीत से, ना कि ट्रॉफियों से। अब देखिए ना, ये अगला गीत जो आप सुनेंगे, आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गीत जो है इसमें कितना जादू है। गीतकार राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार तो मदन मोहन, जिनके बारे में आज हम बातें कर रहे हैं, गायिका लता मंगेशकर और फिल्म है मेरा साया।

सन 1962 में ये फिल्म आई थी, यानी हकीकत के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ये जो गीत अभी आपने सुना और आप आगे भी सुनेंगे, तो ये जो फिल्म थी ना, ये एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी थी और चारों ओर उन दिनों मौत और तबाही का मंजर था, देश में उदासी छाई हुई थी। लेकिन कई लोगों ने ये बीड़ा उठाया और सोचा कि सैनिकों और जनता को प्रेरित करना ज़रूरी है। मदन मोहन भी आगे आए। इस फिल्म के बनने की कहानी भी काफ़ी लंबी है दोस्तों। अगर आपको याद होगा, हमने गुलदस्ता में ही हकीकत के बारे में बातें की थी कि ये फिल्म कैसे बनी, और आगे भी हम आपको बताएंगे, इस बारे में बातें करेंगे। लेकिन अभी तो हम मदन मोहन साहब पर आज के गुलदस्ता में बातें कर रहे हैं। तो मदन मोहन साहब आगे आए इस हकीकत फिल्म के लिए। कैफी आज़मी ने गीत लिखे और मदन मोहन ने बहुत शानदार रचनाएँ प्रस्तुत की इस फिल्म के लिए, जो उस समय की गंभीरता को दर्शाती है। और साथ ही इस फिल्म के गानों में एक युद्ध बोध भी है। वो गीत आपको याद है ना, सी रामचंद्र का कंपोज किया हुआ, लता मंगेशकर की आवाज है जिसमें, जो गीत आप कभी भूल ही नहीं सकते, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो लगभग वैसा ही ये गीत है। तो 1962 में जो ये युद्ध हुआ था, उसके पृष्ठभूमि में ये हकीकत फिल्म बनी थी। और इसमें और ये फिल्म उदासी और सैनिकों के बलिदानों की याद दिलाता था। और पता है, इस फिल्म के सारे गीतों ने ऐसा प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर लिया दोस्तों, जिसे राष्ट्रीय दिवसों पर कभी भुलाया नहीं जाता। और ये जो गीत है ना, ये संगीत की दृष्टि से भी बहुत ही बहुत प्रभावशाली है। और कैफी आज़मी के बोल सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं हकीकत फिल्म का यही गीत, हो के मजबूर। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, भूपिंदर, तलत महमूद और मन्ना डे। आइए सुनते हैं।

सच है श्रोताओं कि संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि हर गुजरते वर्ष के साथ और अधिक अनमोल होते चले जाते हैं। आज का जो ये गुलदस्ता है, इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस जादूगर को जिनकी धुनों में दर्द भी था, प्यार भी था, इंतज़ार भी था और जीवन की अनगिनत संवेदनाओं का मधुर संगीत भी। हम बातें कर रहे हैं महान संगीतकार मदन मोहन जी की। पता है दोस्तों, जब भी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग का जिक्र होता है तो मदन मोहन का नाम बहुत ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। उन्हें यूं ही गज़लों का शहजादा नहीं कहा गया। उनकी धुनों में ऐसी नफासत, ऐसी मिठास और ऐसी रूहानियत थी कि सुनने वाला बरबस ही उनकी दुनिया में, उनके सुरों की दुनिया में खो जाता है। कहते हैं कि संगीत केवल सुरों का मेल नहीं होता, बल्कि दिल की भावनाओं का प्रवाह होता है। मदन मोहन की धुनों को सुनकर ये बात पूरी तरह सच लगती है। उनकी रचनाओं में शास्त्रीय संगीत की गंभीरता थी, गजल की नज़ाकत थी और लोकप्रिय संगीत की सरलता भी थी। इस बीच एक और गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म चिराग से, आइए सुनते हैं।

0: 14 जुलाई 1975 को जब मदन मोहन साहब इस दुनिया से गए तो पीछे छोड़ गए एक अनकहा खजाना, सैकड़ों ऐसी धुनें जो आज भी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में सांसें ले रही हैं और हम आज भी उनके गीतों से अपनी तन्हाइयाँ, अपनी मोहब्बतें, अपने अधूरे ख्वाब बांटते हैं। क्योंकि मदन मोहन सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो हमारी भावनाओं के अनकहे शब्द थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त अणिमा को भी दीजिए विदा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है और इसका समय समाप्त हो चला है। तो मिलेंगे फिर किसी अगले कार्यक्रम में कुछ और बातों के साथ, कुछ और गीतों के साथ। तब तक खुश रहिए, नमस्कार।
1: क्या कहूँ, दुनिया ने किया मुझसे कैसा
0: बेवफा। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

बहनों श्रीना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज इस सप्ताह का आखिरी दिन है। बहनों यह दिन केवल एक सप्ताह भर का या केवल एक दिन का उत्साह नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पेड़ों और वनों के महत्व के प्रति जागरूक करना है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी करना है। बहनों वन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिसे हम सांस ले पाते हैं और वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हवा को शुद्ध बनाते हैं। जंगल पशु पक्षियों का घर होते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं, पर आज तेजी से बढ़ती कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण वनों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव, सूखा और बाढ़, वर्षा में कमी। वन महोत्सव सप्ताह मनाने का उद्देश्य इन समस्याओं के प्रति लोगों को सचेत करना है। बहनों वन हमारे जीवन के लिए अमूल्य है, इनके बिना जीवन

की कल्पना करना कठिन है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वनों की कटाई रोकने और प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। वनु कहते हैं एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि कम से कम एक पेड़ लगाकर पर्यावरण

0: के लिए हरित और स्वच्छ पर्यावरण छोड़ना चाहिए, इसलिए रुक करें। तो बहनों, इसी के साथ अब अपनी इस चर्चा को देती हूँ विराम और सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, आज है मंगलवार और मंगलवार को हम सुनते हैं भेंट वार्ता, जिसके तहत हम अलग अलग विषयों की जानकारी हासिल करते हैं। तो इस संदर्भ में आज है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। तो आज हम जानेंगे कि उन्नत मातृ आयु से संबंधित। तो बहनों, उन्नत मातृ आयु से हमारा आशय सामान्यतः 35 वर्ष या उससे अधिक आयु में गर्भधारण करने से है। आज के समय में उच्च शिक्षा, करियर, आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत कारणों से अनेक महिलाएं देर से मातृत्व अपनाती हैं, पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण इस आयु में भी सुरक्षित गर्भावस्था और स्वस्थ शिशु का जन्म संभव है। लेकिन कम आयु की तुलना में कुछ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसी गर्भावस्था में विशेष सावधानी, नियमित चिकित्सकीय देखभाल और संतुलित जीवन शैली की आवश्यकता होती है। और ज़्यादा जानने के लिए बहनों, सुनते हैं पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय है उन्नत मातृ आयु गर्भावस्था के जोखिम और सुरक्षा के उपाय। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर अर्चना झा, उनसे बातचीत कर रही हैं भारती झा।
2: बहनों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में बहनों अक्सर स्वास्थ्य से संबंधित भेंट वार्ता आपको सुनवाते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम आपको उन्नत मातृ आयु गर्भावस्था के जोखिम और सुरक्षा उपाय से संबंधित भेंट वार्ता आपको सुनवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना झा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहिबा, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि अधिक उम्र की गर्भावस्था में क्या क्या जोखिम है।
3: नमस्कार, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी इस आमंत्रण के लिए। आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बहुत केयर करिए अपने स्वास्थ्य का। विषय है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो जिंदगी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और जो महिलाएं है वो अपने करियर के लिए जो प्रेगनेंसी है उसको डिले कर देर से गर्भाधारण करने का टालती हैं। हाँ, और पढ़ाई का ऐसा है कि वो तो अंतहीन है। करियर, अच्छा करियर में फिर प्रमोशन, फिर और अच्छा करने का जो ये रहता है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जो एज है वो तो रुकता नहीं है
2: जी।
3: तो उम्र पर शादी करने के बाद प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत होती है और प्रेगनेंसी का आउटकम भी परेशानी भरा होता है। तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि पहले तो गर्भधारण में ही मुश्किल होता है, क्योंकि 35 के बाद तो अंडा जो है वो क्वालिटी खराब हो जाता है उसका, तो प्रेगनेंसी रुकना ही मुश्किल है, गर्भधारण ही बहुत ही मुश्किल होता है वैसे केस में। और किसी का बच्चा एक पहले हुआ है, दूसरे के लिए सोच रहे हैं, तो उनको भी काफी दिक्कत हो सकती है।
2: डॉक्टर साहब, इस संबंध में आपसे और विशेष जानना चाहेंगे कि पहले मेनोपॉज के पहले तक महिलाएं बच्चे पैदा करती रहती थी, तो उस समय कैसे होता था पुराने वक्त में?
3: पहले क्या था ना कि जो महिलाएं बच्चे पैदा करती थी, लेकिन दो बच्चों के बीच में उम्र का अंतर हुआ करता था, इतना जल्दी जल्दी बच्चा नहीं होता था। देखेंगे कि वो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी और ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही अच्छा गर्भ निरोधक का काम करता था, तो इस वजह से और मेनोपॉज तक नहीं करती, 4-5 बच्चे

0: थे उनके अर्ली शुरू हो जाते थे, लेकिन किसी को बाद में भी हो गया, एक 40 साल के बाद में हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें लोग लैगेशन भी बहुत करवाते थे, महिला पुरुषों में नसबंदी काफी हुआ करती थी पहले के जमाने में। तो ऐसा नहीं है, अंतिम तक नहीं कर सकते, लेकिन आप 48 ईयर्स तक बच्चा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उम्र होता है ना, ओवुलेशन कम होने लगता है और उसका जो जो एग होता है, अंडा होता है, उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, तो उसको प्रजनन की क्षमता भी उसकी कम हो जाती है, तो गर्भ रुकना ही पहले तो दिक्कत होता है, और चूंकि उसमें खराबी हो गई है और हार्मोन्स का लेवल भी थोड़ा कम बेसी होता है, प्लस जो उम्र की कुछ बीमारियां होती है जैसे मोटापा होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, चीनी की बीमारी होना,
1: थायराइड
0: होना, या स्ट्रेस, एज के साथ स्ट्रेस भी, उनका अपना वर्क जॉब है उसका स्ट्रेस और आगे बढ़ने का स्ट्रेस, तो ये सारे परेशानियां हैं जो कि गर्भवत शिशु के लिए भी
1: इम्यूनिटी भी घटती जाती है उम्र बढ़ने के साथ।
0: इम्यूनिटी तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें तो इम्यूनो सप्रेशन होता है, इम्यूनिटी कम होगी तभी बच्चा रुकता है, क्योंकि वो बाहर फॉरेन बॉडी है। तो इसमें क्या है ना कि बच्चा रुक जाता है, लेकिन फिर अगर एक क्वालिटी अच्छा नहीं है या फिर और कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि पेशेंट को अगर चीनी की बीमारी और कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर है अगर कंट्रोल नहीं है, कोई लीवर का डिजीज है या कुछ किडनी का परेशानी, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जो उम्र के साथ होता है, तो उसके कारण से अबॉर्शन होने का डर रहता है। मतलब शुरू के 3 महीने में ही गर्भपात हो सकता है या अगले 2 महीने के अंदर गर्भपात, 5 महीने के अंदर वो गर्भपात हो जा सकता है ऐसे पेशेंट में, तो ये एक अलग समस्या है।
1: मैम, शुरुआती 3 महीना ज्यादा खतरनाक माना जाता है?
0: शुरुआती 3 महीने में एक्चुअली जो 50% गर्भवत शिशु है वो एबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रोमोजोम की गड़बड़ी होती है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से जितनी भी प्रेगनेंसी होती है 50% उसको नुकसान होना ही होना शुरू के 3 महीने में ही, बाकी 25% भी और अगले 5 महीने तक में हो जाता है, और बाकी तो ऐसे सोच लीजिए कि सिर्फ 25-30% ही बच्चा पूरा टर्म पे पैदा होता है
1: जी।
0: ठीक है, तो पहला तो एक अबॉर्शन का डर है, अबॉर्शन हो सकता है। दूसरी बात, इन पेशेंट्स में जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन खान पीने की भी हो जाती है इनको, जैसे कि एज के कारण से इनको थोड़ा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो आप उसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करोगे, और काफी सारा ये डायबिटीज है तो उसके हिसाब से
1: सारी बीमारियां जब घर बनाने लगती हैं
0: तो हाँ, तो न्यूट्रिशन भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो बच्चा जो बढ़ता है उसमें जो है वो बढ़ने में उसमें दिक्कत, IUGR बोलते हैं उसको, अंदर ही बच्चा मतलब उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है, और कभी कभी माइक्रोसोमिक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, काफी बड़ा भी हो जा सकता है बच्चा, मैंने जितना होना चाहिए उससे ज्यादा वेट का भी हो सकता है, तो ये दोनों ही केस डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि होने में परेशानी होगी। और जो ऐसे भी हमारे यहाँ जो है काफी पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी होती है प्रेगनेंसी में, तो इन पेशेंट में ज्यादा चांस रहेगा, या पहले से अगर उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था या चीनी की बीमारी थी तो अभी कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज्यादा, उसको ठीक करने के लिए ज्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा विजिट उनको ज्यादा बार डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा और बार बार जाँच भी कराना पड़ेगा। और अगर हम लोग उससे भी निकल जाते हैं, मतलब नहीं ब्लड प्रेशर भी ठीक रह गया, डायबिटीज भी नहीं है, तो फिर उनको लास्ट सेमेस्टर में लास्ट में उनको चमकी की बीमारी हो सकती है कभी कभी, जिसको इक्लेम्सिया बोलते हैं, इक्लेम्सिया हो सकता है या सीवियर प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, और जो है उनको ऐसा हो सकता है कि शिशु अगर बड़ा है ज्यादा तो उनको डिलीवरी के टाइम भी ज्यादा परेशानी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई हैं, बोन्स भी थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो गए, तो उनमें थोड़ा सा डायलेट करके रास्ता देने की संभावना कम होती है, तो ऐसे ही पेशेंट में ऑपरेशन से डिलीवरी ज़्यादा होती है, और ऑपरेशन के बाद तो आप जानते ही हो कॉम्प्लिकेशंस, ऑपरेशन का खुद ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो कुल मिला के वो बच्चे माँ के लिए तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि शुरू में अबॉर्शन हो सकता है या बच्चे का ग्रोथ कम हो सकता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, चीनी की बीमारी हो सकती है, उनको ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऑपरेशन के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं करने के कारण से, या हो सकता है कि उनको सिजेरियन करना पड़े, ये सब परेशानियां हैं। और बच्चे के लिए भी परेशानी होती है, बच्चे के लिए क्या परेशानी, अबॉर्शन हो गया तो बच्चा खराब भी हो गया, दूसरा इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का विकास सही से नहीं हो रहा है ऐसा हो सकता है, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए उसकी वजह से उसको पहले ही समय के पहले डिलीवरी करवाना पड़ सकता है, और उन्हीं बच्चों में फिर उन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और जैसे अगर शुगर का बीमारी था तो उसका अगर कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ तो कंजनाटल जन्मजात जो क्रोमोजोम्स की गड़बड़ी है वो भी इन महिलाओं में देखा गया है।
1: तो अधिक उम्र में जब हम गर्भ धारण करते हैं तो उसका मानसिक शारीरिक क्या महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है और बच्चों पर भी, माँ बच्चे दोनों पर?
0: देखिए हर चीज की एक उम्र होती है, जो 25 से लेकर 35 साल की जो उम्र है वो बच्चा लेने के लिए बहुत अच्छी उम्र है, इस समय कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, और जैसे जैसे एज ज़्यादा होता है तो पेशेंट को ये भी रहता है कि अभी ये बच्चा मेरा सही सलामत हो जाना चाहिए, तो स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा होता है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर उनको काम का भी लोड हो तो फिर वो अपना ध्यान भी उतना नहीं रख पाती हैं, सीटिंग आवर

0: ज्यादा हो जाते हैं उनको, जैसे कि दिन में 2 घंटे का आराम चाहिए वो नहीं मिल पाता है, रात में 8 घंटे का आराम चाहिए वो भी शायद वो नहीं निकाल पाती है टाइम। तो स्ट्रेस फैक्टर के कारण से मदर को भी दिक्कत हो सकती है और उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो सकती है या शुगर होने की शिकायत हो सकती है,
1: और होने वाले बच्चे पर भी फिर उसका प्रभाव पड़ेगा।
0: ऐसा देखा गया कि बच्चों में जो है, एक तो बताया कि जन्मजात कुछ क्रोमोसोम की गड़बड़ी हो सकती है, तो वैसे बच्चे जैसे ऑटिज्म होता है, बच्चा तो बढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है।
1: ऑटिज्म की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई।
0: हाँ, उसी कारण से एक एज भी उसका फैक्टर है, ये हो सकता है। और अगर बच्चा अंदर ही कमजोर पैदा हुआ है, तो जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं या ग्रोथ रिटार्डेड होते हैं, उन बच्चों में भविष्य में जो है, भविष्य में उनमें जो कुछ बीमारियां होने की ज्यादा संभावना है, जैसे ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज का, उसके बाद उनको पीसीओडी नामक बीमारी, अगर बच्ची है तो उनको पीसीओडी की बीमारी होने के, कुछ कैंसर, ये सब उनमें हो सकता है। तो इसलिए फ्यूचर भी थोड़ा दिक्कत है।
1: हम इसका समाधान क्या है?
0: समाधान ये है कि आप जब बड़े होते हो, एक्चुअली आपका आसपास का परिवेश कैसा है, फैमिली कैसा, उस पर डिपेंड करता है। तो खास करके जो मदर है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको बच्चियों को एक सही जो उनकी परवरिश है होनी चाहिए, कैरियर ओरिएंटेड होना बहुत होना अच्छा जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन वक्त पे शादी और वक्त पे बच्चा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर जिंदगी तो चलती रहती है, आखिर लोग इतनी आपाधापी क्यों कर रहे हैं, परिवार के लिए करते हैं। तो इसलिए उनको सही वक्त पे, अगर सही सलामत बच्चा हो जाता है, एक या दो भी बच्चा उनको चाहिए, तो फिर उनकी आगे की जिंदगी भी खुशहाल हो सकती
1: जी,
0: है।
1: जी जी मैम, एक बात हमें और बताएं कि अधिक उम्र की गर्भावस्था में क्या IVF की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका भी अक्सर आजकल नाम सुनने में आता है।
0: बहुत सही सुना आपने। एक्चुअली होता क्या है, जो मैं बता रही हूँ ना, बच्चियाँ जो पैदा होती हैं तो वो उनका 400 अंडा होता है, उसमें 400 अंडा लेके पैदा होती है, और हर मेंस के साथ एक अंडा निकल जाता है, ठीक है। तो एज के साथ साथ ये अंडा तो निकल रहा है, अगर आप कुछ गर्भनिरोधक यूज नहीं कर रहे तो हर महीने एक अंडा निकल जा रहा है। तो जब एज के बाद क्या होता है कि एक जो रिजर्व है वो कम हो जाता है, रिजर्व कम हो जाता है, और ऐसा देखा गया कि जब रिजर्व कम है तो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो रुकने में परेशानी आ रही है, और तो उसमें फिर परेशानी होगी। तो ऐसे केसेस में, और एज चूंकि अब कम है, तो आप नेचुरल मेथड से अगर चाहते हो कि बच्चा रुकेगा तो अभी कभी रुकेगा, तो कोई ठिकाना तो है नहीं उसका। तो इस केसेस, ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि नहीं, IVF की सलाह लेने से क्या होगी कि आपको मेडिसिन के द्वारा एक ही क्वालिटी भी अच्छी कराई जाएगी, और फिर आपको सपोर्टिव होगा सारा, मेडिसिन ऐसा दिया जाएगा कि आपका गर्भ शिशु सही से बढ़े, और फिर टाइमली आप उसका।
1: तो मैम, क्या वो बिल्कुल सफल है?
0: IVF है, एक नई तकनीक है, हालांकि काफी दिनों से ये है, और अपने शहर में भी ये काफी सारे IVF सेंटर्स हैं। इस तकनीक में क्या होता है ना कि जो एग होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है अल्ट्रासाउंड के गाइडेड, और जो मेल का स्पर्म है उसको भी तैयार करके बाहर ही निषेचन कराया जाता है, जो अंदर ट्यूब में हो रहा था काम वो बाहर होता है। तो इसलिए इसको परखनली शिशु भी कहा जाता है। तो यहाँ पे करा के उसके बाद 3 दिन के बाद उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर वहाँ बच्चा बढ़ता है। लेकिन जो जितने बच्चे ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें 2 या 3 दिया जाता है, उसमें से जो बेस्ट सिंगल होता है उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये तकनीक 100% इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अबॉर्शन बताया कि 50% तो अबॉर्शन हो जाता है, तो इसमें भी अबॉर्शन होने का चांसेस है। तो इसलिए बहुत अच्छे सेंटर में भी 45-50% तक सक्सेस होता है, और इसको सक्सेसफुल नहीं होने का और भी कई वजह होता है, लेकिन ज़्यादातर सेंटर में सक्सेस होता है, लेकिन सक्सेस का मैक्सिमम चांस 50% ही है।
1: डॉक्टर साहिबा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एग फ्रीजिंग क्या है, अधिक उम्र की गर्भावस्था में क्या वो कुछ काम कर सकता है?
0: एग फ्रीजिंग एक तकनीक है जिसके थ्रू आप जो है एग को रख सकते हैं या एम्ब्रियो को भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ, जैसे कि अभी काफ़ी लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, या फिर वो लोग रिलेशनशिप में हैं बट अभी शादी नहीं कर रहे, या बच्चा नहीं कर रहे अभी, या अभी शादी कर लिया लेकिन बच्चा अभी नहीं चाह रहे, तो वो लोग अपने, चाहे तो फीमेल अपने एग को फ्रीज कर सकती है, माने रखवा सकती है फ्यूचर के लिए। तो जो 25-30 की आयु है उस वक्त एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, तो वो ऑप्टिमम एज होगा जब आप फ्रीज कर सकते हो, और उसी एज में आप एम्ब्रियो भी फ्रीज कर सकते हो। मतलब जैसे कि IVF के लिए हम लोग तैयार करते हैं, वही प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए आपको, तो एम्ब्रियो को भी फ्रीज कराया जा सकता है कि बाद में आप खुद ही बच्चा ले सकते हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि महिलाएं खुद नहीं ले पाती हैं, या उनका ऐसा प्रॉब्लम है कि उनको दिक्कत होगा, तो ऐसे में सरोगेट मदर के थ्रू भी होता है। जैसे कि आप जानती होंगी कि जब हमारी स्टार लोग हैं, जैसे
1: अक्सर सुनने में आता,
0: या फिर अभी जो विराट कोहली की जो वाइफ है, उन लोगों ने सरोगेसी के ही थ्रू बच्चा लिया है। तो ये है, तो ये नई तकनीक है, हालांकि कॉस्टली है लेकिन उपलब्ध है ये।
1: जी डॉक्टर साहिबा, अब हम अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जब जीवन लेट से शुरू हो रहा है, तो एक महिला रोग विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं, और अंत में अपनी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, जिंदगी

0: शुरू दिन से ही कॉम्प्लिकेटेड ही है, 9 मंथ का गर्भावस्था भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव नज़रिया रखें और सही समय पे सही डिसीजन लें तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और हर वक्त हर चीज़ का एक अच्छा वक्त तो होता ही होता है, लेकिन जब आप लेट हो ही गए हो तो उसमें आप शादी के जस्ट पहले
1: जी,
0: अभी कपल काउंसलिंग होता है, प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग में दोनों पार्टनर अपने अपना जांच करवाते हैं, जिससे उनको जांच से पता लगता है कि उनको ऐसी कोई खराबी तो नहीं है जिससे कि बच्चा लेने में दिक्कत होगा, और कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जैसे अगर डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन या और कोई बीमारी है तो उसके लिए वो उस टाइम दवा लेंगे। उसके बाद सेकेंड होता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, मतलब बच्चा रुकने के प्रेगनेंसी लेने के पहले आप एक बार दिखा लो, और जो भी पैरामीटर्स है जैसे ओबेसिटी है, कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा अगर ये वेट है तो उनको कम करना, डायबिटीज कंट्रोल करना, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना, और फॉलिक एसिड लेना, कुछ हम लोग उसमें दवाइयाँ देते हैं कि उनका एक यूट्रस का भी माहौल अच्छा हो जाए और उनका हेल्थ भी अच्छा हो जाए, कि ताकि अब अगर प्रेगनेंसी या तो नेचुरल वे में रुके या फिर IVF से रुके तो उनको कॉम्प्लिकेशंस कम हो, और उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी के तुलना में ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा चेकअप करने की ज़रूरत होती है, और वो रूटीन चेकअप अगर कराती रहेंगी और जो कॉम्प्लिकेशन समझेंगी तो फिर उनको आउटकम सही रहेगा, मतलब जब जागे तभी सवेरा, ऐसी बात है। लेकिन ऐसे केस में आप दो प्रेगनेंसी में गैप नहीं करना है, दो तो ज़रूर करना है। अभी ऐसा हो गया है कि सिंगल चाइल्ड फैमिली हो गई है बहुत सारी, लोग बहुत खुश होते कि नहीं मैं उतना कर नहीं पाऊंगी, एक को मैं बहुत अच्छे से परवरिश करूँगी, दूसरा मैं नहीं ला सकती या मुझे टाइम नहीं है, लेकिन वो जो नोशन है वो गलत है। एटलीस्ट दो बच्चे ज़रूर होना चाहिए, बेटा हो या बेटी, दो ज़रूर होना चाहिए, और ख़ास करके जिनका लेट हुआ है शुरू तो उनके दो बच्चे के बीच में गैप कम रखना पड़ेगा
1: आजकल
0: उनको।
1: तो ज़्यादातर सिजेरियन हो रहा है तो उसमें तो ऑलरेडी गैप हो भी जाता है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी वाले खास गैप का
0: नहीं, इसमें कम रखना है, इसमें कम रखना है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका तो एक क्वालिटी अगर रिजर्व प्रिजर्व कराते तो ठीक है, लेकिन ऐसे आपका हर मंथ एक खत्म हो रहा है ना
1: जी।
0: तो और एज के साथ कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस का चांसेस ज़्यादा है बच्चे में, तो उसमें फिर डाउन सिंड्रोम होने का चांस रहेगा, या और कोई क्रोमोजोम की गड़बड़ी है जिसमें आप बच्चा आपका सही नहीं रहेगा तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ जाएगा, तो इस वजह से आपको वो भी करना है। और जो जांच है जो कि हम लोग कराते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, डिटेल अल्ट्रासाउंड, उसी तरह से NIPT या सेल्फ फ्री DNA से टेस्ट हो सकता है कुछ खराबी तो नहीं है, तो वो सब हम लोग करवा के एक सेफ डिलीवरी जो होती है वो हो सकती है, और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी का अपना एक इंडिकेशन है, सिजेरियन का अपना इंडिकेशन है, लेकिन एज वाले पेशेंट में चूंकि ये बहुत मैंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और वैल्यूबल होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं कि एक बार अबॉर्शन हो गया, एक बार बच्चा खराब हो गया तो फिर हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और डॉक्टर और पेशेंट और जो उनके रिलेटिव्स हैं ये सारे लोगों का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और लोग फॉलो करें अगर डॉक्टर्स को, तो ये सारा आउटकम अच्छा हो सकता है और एक सुखद भविष्य उनका हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहिब, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमें मूल्यवान जानकारियों से अवगत कराया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: आपका भी सभी का धन्यवाद, कि आप लोगों को स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपना बहुत बहुत केयर करें, धन्यवाद।
2: मैनु हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था उन्नत मातृ आयु गर्भावस्था के जोखिम और सुरक्षा के उपाय। भेंट वार्ता कार थी डॉक्टर अर्चना झा, उनसे बातचीत कर रही थी भारती झा। और बहनों अब समय है गीत सुनने का, तो सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, 2 दिनों से मौसम में बदलाव आए हैं। गर्मी की तपिश कम हुई है, साथ ही वर्षा की रिमझिम फुहारे मन को सुकून दे रहे हैं। तो बहनों, मौसम का लुत्फ उठाए और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। अब हमें ते आज्ञा। नमस्कार।

ये था महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृवृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
1: मातृवृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़

0: से जुड़ जाती हैं।
1: जी।
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी।
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है, अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरिनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया, को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो आओ।

0: रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
2: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
0: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
2: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
2: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
2: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
0: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें मम्मी कहते हैं। मम्मी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ। कादिर आओ, आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।

0: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
1: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
0: क्यों?
1: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यहीं कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज कलाकार हैं कृष्णानंद पासवान। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए देवी गीत।

0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: कृष्णानंद पासवान को आप सुन रहे हैं लोकरंग कार्यक्रम में। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक झूमर।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे 1:20 पर। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू ही पूछताछ। राज्य में SIR अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। CEO ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची से मांगा सहयोग। JPSC बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल MS धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में झारखंड समेत देश भर के प्रतिनिधि और शोधकर्ता भी हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। जांच एजेंसी उनसे वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्त विभाग की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल ईडी ने उनके पुत्र रोहित उरांव से भी लंबी पूछताछ की थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के शुरुआती 7 दिनों में 1,05,00,000 से अधिक मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से BLA2 की भागीदारी सुनिश्चित करने और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग की अपील की है। रांची के बेड़ों में आयोजित राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 254 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान 429 विद्यार्थियों के बीच साइकिल और आम के पौधे बांटे गए। मंत्री ने युवाओं से मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहयोग की अपील की। रांची में स्वयंसेवी संस्था नीड्स और XISS के सहयोग से 5 दिवसीय बांस इकोसिस्टम कार्यशाला जारी है। ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार 7 जिलों की 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर क्राफ्ट सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। नीड्स के कार्यकारी निदेशक मुरारी M. चौधरी ने बांस को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
2: ये ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के तहत ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले लॉन्च किया गया। ये 5 दिन का हम लोग कॉन्क्लेव कर ले। हमारा पूरा प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम एक इकोसिस्टम स्टेट में क्रिएट करें बैम्बू का और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनकर आए। हमारा इस योजना में 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़ने प्रोग्राम है 7 जिलों में।
0: रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान पर 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजित

0: इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को कराधान, व्यावसायिक कौशल और प्रबंधन सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @handle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @handle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल @airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार भाजपा नेता नीरज सिंह को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर ला रही है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के सहयोग से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम के आज देर शाम तक आरोपी को लेकर शहर पहुंचने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेता नीरज सिंह की गिरफ्तारी पर विधायक सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले के निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है।
1: जो भी आरोपी है, अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है तो इसके बारे में हम ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि इनको गिरफ्तार किया, इनको नहीं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया तो इनके ऊपर आरोप क्या है? आपका जो FIR है उसमें कोई आरोप स्पष्ट नहीं है। उनके ऊपर आरोप है जिसके कारण से उनको नामजद किया गया है, धाराएं लगाई गई।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आज सुबह के कारोबारी क्षेत्र में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में लगभग 0.4% की तेजी देखी गई, जिससे सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 78,592 पर और निफ्टी 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संताल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: में जो पूरा संथाल का इलाका मतलब साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, यहाँ तक में आपको भारी बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। तभी सिस्टम के प्रभाव में अगले दो दिन तक लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 8 तारीख से हल्की से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। भारी बारिश की आशंका थोड़ी सी कम है।
0: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही उनके रांची स्थित सिमलिया आवास के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ है। देश विदेश से फैंस सोशल मीडिया के जरिए भी धोनी को बधाइयां दे रहे हैं। रांची जिला क्रिकेट संघ में वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद सचिव शैलेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष सौमित्र पटनायक के अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शंभू शरण सिन्हा को कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू हुई पूछताछ। राज्य में SIR अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। CEO ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची में मांगा सहयोग। JPSC बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में

0: सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश और कैप्टन कूल एमएस धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़े समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं कृष्णानंद पासवान। इनके स्वर में आइए सुनते हैं जतसार।

कृष्णानंद पासवान की गायी इस पूर्वी के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक अशोक अंचल और प्रस्तुत करता है दासमती चातर और अशोक शरण। आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल।

0: गंगा का आगमन होता है एक ऐसे प्रदेश में जिसे प्राचीन इतिहास में कुसुमपुर, पुष्पपुर, वजीमाबाद, मगध तथा पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया है। भारत की दूसरी महान तथा प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र से बना पटना शहर आज बिहार की राजधानी है।
1: गंगा के लिए पटना सदियों से महत्वपूर्ण तथा रोमांचकारी स्थल रहा है। चाणक्य जैसी तेजस्वी बुद्धि, अजात शत्रु तथा चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान योद्धा तथा सम्राट अशोक जैसे योद्धा एवं बौद्ध धर्म प्रचारक की कर्मभूमि भी यही रही है।
0: पटना में ही गंगा किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, जो हरमंदिर साहिब कहलाता है। विभिन्न धर्म जातियों का केंद्र पटना सचमुच गंगा की कृपा से आज भी धन्य है, आबाद है।
1: पटना निवासियों की रग रग में गंगा समाहित है। मगही गीतों में गंगा का चित्रण कई रूपों में किया गया है। विशेषकर गंगा किनारे पटना निवासियों के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व में
0: गंगा के दोनों किनारे मीलों दूर तक केवल लोगों से ही भर जाते हैं। सभी ओर मंत्रोच्चारण, शंख, घंटी तथा छठ गीतों की गूंज ही सुनाई देती है, और इन सभी गीतों की शोभा होती है गंगा।

दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है, पर छठ की तैयारी तो दिवाली के साथ ही शुरू हो जाती है। जिन जिन स्थानों से गंगा निकली है उन सभी स्थानों की सफाई की जाती है। सभी लोग इस पावन कार्य में हाथ बटाते हैं। गंगा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। छठ के दिन पूरा पटना शहर गंगा की गोद में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ता है।

0: छठ उत्सव में गंगा चारों ओर नावों से भर जाती है। रंग बिरंगे कपड़ों से सुसज्जित लोग नाव पर बैठकर गंगा की सैर करते हैं।
1: ऐसे अवसर पर सबसे ज्यादा उत्साहित दिखते हैं नाविक। लाखों लोगों की गंगा के प्रति श्रद्धा देखकर नाविक भी अछूता नहीं रहता। उसी श्रद्धा में सराबोर हो वो झूमने और गाने लगता है।
2: देवो

तुम्हारी झिलमिल चमकती उज्जवल धारा सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। मैया, आप सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करो और मेरे पतिदेव को सकुशल पहुंचा दो।

0: यदि किसी कारणवश पति समय पर नहीं लौटता तो पत्नी के दिल में तरह तरह की शंकाएं पैदा होने लगती हैं। ऐसी ही शंका एक नाविक की पत्नी को भी हो जाती है। जब एक लंबे समय तक उसका पति लौट कर नहीं आता तो वो बेचैन हो जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए गंगा किनारे पहुंच जाती है।
1: पर ये क्या, उसका पति तो साधु का वेश धारण कर गंगा की रेत पर बैठ तपस्या कर रहा है। वो अपने पति के पास जाकर कहती है, आपके सिर पर लंबी लंबी जटा है और मेरे सिर पर लंबे बाल, मेरे अंग पर रंग बिरंगी चुनरी है और आपके पास मृगछाल, आपके पास कमंडल है और मेरे पास करताल, मैं भी आपके साथ मिलकर तपस्या करूंगी।

0: गंगा की लहरों पर किसी का वश नहीं चलता, इसकी लहरें घटती बढ़ती रहती हैं। सावन भादो के महीने में तो गंगा का रूप ही बदल जाता है। गंगा इतनी फैल जाती है, ऐसे लगता है जैसे पूरे पटना शहर को ही डुबो देगी। लोग भय के मारे गंगा की ओर जाते भी नहीं। कहीं कहीं तो गंगा अपनी प्रचंड धारा में कई गांवों को डुबो देती है।
1: उसकी विनाश लीला से लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, पर बाढ़ के थमते ही गंगा भूमि को उपजाऊ बना देती है। लोग उस उपजाऊ भूमि पर खेती कर सभी पीड़ा को भूल जाते हैं।
0: गंगा की इस विनाश लीला को देखकर एक स्त्री गंगा से कहती है, हे मैया, आप अपनी इन प्रचंड लहरों को सिमटा लीजिए, आपके इस रूप को देखकर मेरे पति डर जाते हैं।
1: गंगा कहती है, सावन भादों के महीने में मेरा रूप तो विशाल हो ही जाता है, पर अश्वन मास में मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ।

0: गंगा के जिस रूप की भी हम चर्चा करें वो कम है, क्योंकि गंगा की गोद में भारत देश का इतिहास छिपा हुआ है। इसीलिए अलग अलग शहरों में गंगा के अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है।
1: जन जन की सेवा में हम गंगा को आगे बढ़ने दें। अगली कड़ी में हम एक नए रूप में गंगा के दर्शन करेंगे।

0: इन सभी गीतों को श्री रमेश प्रसाद, सुभाष सिंह, चंद्रकांता, राधा देवी, दिनेश पटेल, गगन, हीरालाल और सूर्य नारायण ने हारमोनियम, ढोलक तथा झाल वाद्य यंत्र के साथ गाया है तथा इन्हें सजाया है।
1: हमारे मोमेंटस प्रोडक्शन के तकनीकी साथी दासमती चार्टर, अशोक शरण, अखिलेश अखिल और विकी ने।
0: अपने साथियों की ओर से हम आपसे आज्ञा लेते हैं।
2: हर हर गंगे, गंगे।

आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक अशोक अंचल, प्रस्तुतकर्ता थे दासमती चैटर और अशोक शरण। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
1: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
1: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
2: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं,
1: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
4: उमंग

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की सभी पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इसके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ और आतंकवाद के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 2 लेन से अधिक लेकिन 4 लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर NH की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले पुलों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल की वसूली केवल फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, 2 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य अधिसूचित श्रेणियों को नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और

0: 12 जुलाई को कयाची में विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में 10 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति के साथ साथ अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी चौथे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण चौथे वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में 15 जुलाई से बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधवारा में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अररिया, भभुआ, किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और सुपौल जिले में तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पेंचक्स

0: अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत की सभी पंचायतों में आज सहयोग शिविर का इनाकाद किया जा रहा है। वजीर आला सम्राट चौधरी अररिया जिले के फारबिसगंज ब्लॉक की हरिपुर पंचायत में मुनक्किद सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उसके सद्देबाब के लिए अफसरान को अहकाम दिए। इस मौके पर मुनक्किद जनसंवाद से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि दरअंदाजी और दहशतगर्दी के लिए रियासत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिहार को दरअंदाजी से पाक बनाने के लिए पाबंद अहद है। रियासती हुकूमत के इख्तियार वाली शाहराहों, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स देना होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सड़क इस्तेमाल को निंदा फीस जाब्ता 2026 नाफिज कर दिया है। नए इंतजाम के तहत दो लेन से ज्यादा लेकिन चार लेन से कम चौड़ाई वाले रियासती शाहराह NH की तयशुदा शरह का 60% टोल लिया जाएगा। वहीं रियासती हुकूमत की एजेंसियों के जरिए तामीर 250 मीटर लंबाई वाले पुलों पर भी टोल टैक्स की वसूली होगी। टोल की वसूली सिर्फ फास्टैग या दीगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तवस्सुस से होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी बाशिंदों, दोपहिया गाड़ियों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड गाड़ियों और दीगर नोटिफाइड जुमरों को जाब्ते के मुताबिक रियायत की तजवीज होगी। असेंबली के मानसून इजलास से कबल 11 और 12 जुलाई को गया जी में अरकान असेंबली का दो रोजा प्रबोधन होगा। असेंबली स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार की सदारत में मुनक्किद इस मीटिंग में इससे मुतल्लिक फैसला लिया गया। प्रबोधन प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, वजीर आला सम्राट चौधरी समेत दीगर मौजूद अफराद मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम में लोकसभा के इदारा प्राइट के ट्रेनर अरकान असेंबली को कानून साजी के उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं की जानकारी देंगे। NDA की एक अहम मीटिंग 10 जुलाई को पटना में होगी। वजीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में होने वाली इस मीटिंग में JDU के कौमी सदर नीतीश कुमार समेत NDA के तमाम सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। JDU के कारगुजार सदर संजय झा ने बताया कि मीटिंग में बांकीपुर असेंबली जिमनी इंतखाब की हिकमत अमली के साथ साथ दीगर उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत की तमाम रिवायती यूनिवर्सिटियों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लाजमी शर्त खत्म करके चौथे साल में दाखिले के लिए 7.5 CGPA दी गई है। लोक भवन के मुताबिक मुतल्लिका कोर्स के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके इस शर्त को खत्म किया गया है। इस तरमीम के बाद अब 6 सेमेस्टर मुकम्मल करने वाले तमाम तलबा को 7वें सेमेस्टर यानी चौथे साल में दाखिला मिल जाएगा। किसी भी तालिब इल्म को महज कम CGPA की वजह से चौथे साल में जाने से नहीं रोका जाएगा। रियासत में वजीर आला हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म मंसूबे के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। महकमा सयाहत ने कहा है कि हेलीकॉप्टर सयाहती सर्विस के लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। बिहार सयाहत और बिहार रियासती सयाहती कारपोरेशन के सरकारी वेबसाइट के तवस्सुस से ही दरखास्तें मंजूर की जाएंगी। महकमा ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के जरिए बुकिंग या पेमेंट नहीं करने की अपील की है। मानसून की फालियत से पूरी रियासत के बेशतर खित्तों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अधवारा में सबसे ज्यादा 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज अररिया, भभुआ, किशनगंज और मगरबी चंपारण जिले के कुछ मकामात पर जबरदस्त बारिश हो सकती है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और सुपौल जिले में तेज हवा चलने की पेशगोई है। महाराष्ट्र के नासिक में मुनक्किद 14वीं जूनियर सब जूनियर पेनचक सिलाट चैंपियनशिप में बेगूसराय की सुप्रिया राज ने गोल्ड मेडल और साक्षी राज ने कांसे का तमगा जीता है। सुप्रिया राज का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना इलाके के तहत ढाला सिम्हा के करीब पुलिस और DIU की टीम ने एक 4-पहिया गाड़ी से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर बने रहें हमारे साथ।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का

0: हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
1: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
7: स्वागत है आपका सुबह के सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
8: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
7: रूबरू होंगे आप खबरों से,
8: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
7: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
8: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
7: आकाशवाणी भागलपुर से, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
9: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
10: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
11: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
10: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
11: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
11: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
10: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
11: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
10: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
12: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
10: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
13: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
10: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
14: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
10: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
15: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
10: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
16: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
10: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किशोर कुमार को फिल्म शर्मिली में। गीतकार नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म है कभी कभी। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खयाम।

साहिर लुधियानवी का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। राहुल देव वर्मन का संगीत है, गायक किशोर कुमार, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से।

0: रामपुर का लक्ष्मण। इस फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव वर्मन। आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रपट से कार्यक्रम में। और अब सुनिए किशोर कुमार को फिल्म अजनबी में। आनंद बख्शी का गीत, संगीतकार हैं राहुल देव वर्मन।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए प्रेम बंधन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। कलाकार हैं जसवंत सिंह।

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं तरंग कार्यक्रम। आज कलाकार हैं जसवंत सिंह।

जसवंत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानि 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 बजे तक और फिर 5 बजे से पुनः आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।
1: भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
2: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही है। एक गाना सुन लेते हैं,
2: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुंचाए हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हम हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। देखिए, इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं। कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल करें।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है
1: जी।
0: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए
1: जी।
0: और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़े और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है
0: जी। बिल्कुल, तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला। जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल है। अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं और कुछ लोग अपना डांस का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नहीं तो रेसिपी ही बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे
0: मतलब
1: पर
0: मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल
0: करना। और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज उंगली पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: ये भाव ताव तो चलता ही, अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो गठरी दो, इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला, मोल भाव करना वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं, उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
1: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं, जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
0: जी एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
1: सुनते हैं
0: जी।

0: अब दीपा जी हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना, अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप जरा बताइए कि ये क्या कर रही है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है?
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है। देखिए, जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये भी एक मुहावरा है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर

0: अपनी बात परोसी, वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी, लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं, जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे, तो वहां पे अर्थ भी बताती थी। तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है, तो अर्थ बदल जाता है।
1: अर्थ बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई। तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे, मोल भाव के लिए इन्होंने लिखा है जी। और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह तरह के डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है,
0: तो 100 रुपए में मिल जाएगा। आज तो हम सबकी हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारे कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा। सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है, तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें? शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
1: जी। जी,
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो
1: जी।
2: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन
1: दिया। पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी।
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया, और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
2: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ।
2: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी।
2: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
3: हाँ।
2: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
3: हाँ, हाँ।
2: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
3: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
2: जी।
3: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी

0: और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
0: बहुत ज्यादा
1: ये कितने
0: मैं
1: दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला ये, बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो
1: अच्छा
0: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, तो सरवाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था कि
1: जी
0: यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन करना पड़ रहा है।
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे, तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी के वो जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये एक
1: गाना,
0: बहुत खूबसूरत सा गाना है।
1: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर मैं जब नागपुर में था दो साल के लिए, मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में दो साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, एक तारीख को सैलरी आती है, वो तोड़नी थी मुझे आदत, क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहां पे एक बिजनेस हमारा था एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे से, तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाति काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा।
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माय लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान जो कि बहुत हिट होते थे और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ
0: जी।
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6'2", भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था। तो वो सब करते करते बट मैंने मूंछ बढ़ाई और अच्छा। मैं थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं
0: जी जी।
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा।
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा।
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
0: जी।
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के, पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे
0: जी।
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं
0: जी, जी।
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं,
0: सहज और स्वाभाविक
1: अभिनय जिसको कहते हैं, तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है
0: जी जी,
1: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो
0: जी।
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है। लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है। अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है
0: जी।
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में
0: जी।
1: तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ, बट आई वुड लव टू एक्सपांड माय थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ। बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर।
0: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ
0: जी।
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था
1: जी।
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी,
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए।
1: हाँ। हाँ।
0: तो वो भी वाकया जो है
1: जी,
0: पहली
1: जी।
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जवानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर डिपेंड है। तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3-3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: ओहो।
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो। वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन परवाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ।
0: अच्छा।
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं
0: जी।
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना,
1: लेकिन मना करना पड़ रहा है, क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं वेरिएशन ना दे पाऊं तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए
0: जी।
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ।
0: अच्छा।
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है
0: जी, अनाज का
1: कोठार, अनाज का कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20-25 फीट के कोठार होते हैं, जो पहले किले पे भी हुआ करते थे।
0: हाँ।
1: जहां पे लोग आके उस पे धान्य डालते थे, कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया।
0: हाँ।
1: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा
0: जी।
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी
0: जी,
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा।
0: अच्छा।
1: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था
0: जी, जी।
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते हो।
0: हाँ, हाँ। बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था
1: जी,
0: इसमें सारे बड़े नाम
1: बहुत,
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता।
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
0: हाँ,
1: अगर आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है
0: जी,
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूं पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं
0: जी जी।
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था।
0: हाँ हाँ।
1: हमारा शो और उनका शो KBC और वो
0: जी जी।
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का। तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
0: जी,
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है। अच्छा। जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले एक मिनट बात करनी है।
0: हाँ।
1: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
0: हाँ हाँ।
1: अरे क्या हो गया?
0: अच्छा।
1: मैंने सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं।
0: हाँ।
1: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले।
0: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
1: हाँ। बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में।
0: हाँ।
1: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे।
0: ओहो,
1: आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
0: चलिए सुनते हैं।

0: दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे।
1: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
2: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
1: हाँ हाँ,
2: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं
1: जी,
2: तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी
1: जी।
2: फिर मैंने बागी 3 भी की जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी
1: जी।
2: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्म में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक, वो एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब सीरीज जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में
1: जी,
2: तो उसके साथ की थी, वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब
1: जी,
2: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का कैरेक्टर
1: किया।
2: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब
1: जी,
2: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड़ से एक युद्ध जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा।
2: रंजीत कपूर सर जो अनु कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े, वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी होंगी आज इंडिया
1: जी, जी।
2: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखो की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ, लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में थी, लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था
1: जी।
2: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू।
1: अच्छा।
2: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी मैंने सर को बताई।
1: अच्छा।
2: बातें हुई, मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जुहू चलो।
1: अच्छा।
2: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ, मिलते हैं बाद में। बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर? अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा।
2: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया। ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
1: अच्छा।
2: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा।
2: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा।
2: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे। और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया कि डीएसपी राणा नाम के उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था
1: जी,
2: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है। Then he gave me that character and I worked with him. It was a beautiful experience working with him also.
1: OTT की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है
2: जी।
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
2: फिल्म और OTT ऑलमोस्ट सेम है।
1: हाँ
2: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है
1: जी।
2: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है।
1: हाँ

0: आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है,
0: होना ही है
1: जी।
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है। और आपके पास में बहुत सारा काम होता है
1: जी जी,
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी
1: जी।
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी,
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात।
0: दो और हमारे आइकॉन थे, भारती मौसी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल,
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
1: अच्छा,
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में, मुझे
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
0: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ,
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी, उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
1: हाँ,
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले, तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो
1: जी।
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल,
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा है वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, नहीं सर पता करने आया, कुछ काम है क्या, नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था, वो सफर है।
1: अच्छा,
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ,
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब।
1: बराबर।
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ,
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी तक समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उनपे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला।
1: है, क्या बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत,
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे, हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे। अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी,
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये करेंगे,
0: हाँ।
1: जैसे एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी जी जी,
1: क्योंकि
0: आपने बड़े भाई का रोल,
1: मैंने उनके बड़े भाई का रोल किया था,
0: मनोज वागले मेरा
1: नाम था
0: जी जी जी।
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ, सभी हम लोग सभी से सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: फास्टर फेने वो शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने,
1: अमेजिंग इट वाज।
0: मतलब
1: पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी, तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था।
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है।
0: अच्छा,
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है।
0: ओके,
1: मेरा जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ हाँ,
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है, इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था, तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है
0: तो बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान है।
1: जी जी जी,
0: और बहुत विनम्र होते हैं,
1: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो किस पे चला रहे हैं कुछ
0: जी, जी,
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित दा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता, लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से, और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर
0: जी,
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे, इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं।

0: अच्छा
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जीडी सर से तू ही आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे।
0: अच्छा
1: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
0: जी
1: वो ज्यादा मैटर करती है,
0: बिल्कुल
1: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है या मराठी में आवंडा गेड़ा समझ तो अपन
0: एक घूंट लेने की जो एक प्रक्रिया
1: वो है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा था, प्रयास करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए। लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी इज सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली
0: जी,
1: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं। मैं उतना जरूर समझता था कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
0: जी,
1: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए तो ही मजा आएगा। तो आई यूज्ड टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था खुद, मैं लिखता हूं जितने भी लाइंस आती है वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज्ड टू राइट इन माय वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
0: जी जी,
1: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
0: जी,
1: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
0: जी।
1: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया, घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
0: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
1: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
0: अच्छा,
1: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहां से आएगा। जो नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
0: अच्छा,
1: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
0: अच्छा,
1: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
0: अच्छा,
1: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा
0: अच्छा,
1: किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया।
0: हाँ,
1: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। धन्यवाद।
0: जी जी,
1: मैंने बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
0: हाँ।
1: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
0: अच्छा
1: अच्छा। चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है। ब्रदर ने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
0: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
1: जी
0: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
1: ट्रू।
0: जी। तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
1: बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
0: हाँ।
1: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात,
0: और क्या चाहिए। क्या बात है।
1: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार है उनको भी अच्छा लगा।
0: हाँ।
1: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
0: क्या बात।
1: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला है नागपुर का इसलिए,
0: हाँ,
1: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी रामजी लंदन वाले।
0: अच्छा हाँ,
1: ये बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
0: अच्छा।
1: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं।
0: अच्छा।
1: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
0: ओहो।
1: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है।
0: हाँ।
1: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना।
0: हुँ।
1: तो बोलते हैं अरे सर, आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है।
0: हाँ।
1: गाड़ी देंगे आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो मजा तो वही है।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे।
0: क्या बात है।
1: That is more important.
0: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा।
0: हो, आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से। जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं, वो जो घुटन है।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं शालिनी और अगले कुछ क्षणों तक रहूंगी आपके साथ। भीषण गर्मी के लंबे दौर के बाद आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है। हल्की हल्की फुहारों ने दस्तक दे दी है और चारों ओर मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी है, मानो मानसून ने अपनी पहली आहट दे दी है। उम्मीद है यह सुहाना मौसम आपके चेहरे पर भी मुस्कान लेकर आया होगा। तो आइए इस खुशनुमा शाम की शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम विवरण के साथ। सबसे पहले होगी चर्चा, जिसका विषय है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयंती। इसके बाद होगी डेली ट्रिविया, जिसमें आज का प्रश्न होगा आकाशवाणी से जुड़ा। फिर बारी होगी हमारे साप्ताहिक खंड की, जिसमें प्रस्तुत होंगे विज्ञानवाणी और विज्ञान वार्ता, जहाँ विज्ञान की रोचक और उपयोगी जानकारियाँ आपके लिए होंगी। इसके बाद होगा संगीत पहेली, सुनिए एक शानदार फिल्मी गीत, उसका आनंद लीजिए और फिर उसी गीत से जुड़ी एक दिलचस्प पहेली का उत्तर हमें भेजिए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में होगा फन फैक्ट, जिसमें जानेंगे आकाशवाणी से जुड़ा एक रोचक तथ्य और अंत में पेश करेंगे समसामयिक खबरों को। तो बने रहिए हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए इस शाम को संगीत के रंगों से और भी खूबसूरत बनाते हैं। सुनिए फिल्म सिम्बा का ये गाना, असीस कौर और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: स्वागत है आपका एक बार फिर युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। विषय है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयंती। गुलेरी जी हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार थे जिन्होंने अपने सीमित लेकिन

उत्कृष्ट लेखन से अमिट पहचान बनाई। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध लेखक, विद्वान, भाषाविद

0: उतनी ही लोकप्रिय है जितनी अपने समय में थी। गुलेरी जी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने का सशक्त साधन भी है। उनके लेखन में सरल भाषा, गहरी संवेदना और विचारों की स्पष्टता देखने को मिलती है। उनकी जयंती हमें उनके साहित्य को पढ़ने, समझने और उससे प्रेरणा लेने का अवसर देती है। आइए हम उनके योगदान को नमन करें और हिंदी भाषा तथा साहित्य के प्रति सम्मान की भावना को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ चर्चा यहीं समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव डेली ट्रिविया की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, रेडियो सुनने के लिए किस प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है? इसका उत्तर आप सोचिए मित्रों, हम शो के अगले पड़ाव में इसका सही उत्तर बताएंगे। अब समय है हमारे साप्ताहिक खंड विज्ञान वार्ता का। आज का विषय है एल नीनो और ला नीना का प्रभाव। इसी विषय पर जानकारी देंगे हमारे वार्ताकार आर्यन शुभम।
1: एल नीनो और ला नीना का भारत उपमहाद्वीप पर प्रभाव। एल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली समुद्री और वायुमंडलीय घटनाएं हैं जो विश्व के मौसम को प्रभावित करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर करता है, इसलिए इन दिनों घटनाओं का भारत के मौसम पर बहुत बड़ा और सीधा असर पड़ता है। एल नीनो के प्रभाव। व्यापारिक पवन समुद्र में गर्म सतही जल को दक्षिण अमेरिकी तट से दूर ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपींस की ओर धकेलते हुए प्रशांत महासागर के किनारे पश्चिम की ओर बहती है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पेरू के तट के पास जल ठंडा होता है एवं पोषक तत्वों से समृद्ध होता है जो कि प्राथमिक उत्पादकों, विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों एवं मुख्य मछलियों को जीवन प्रदान करता है। एल नीनो के दौरान व्यापारिक पवने मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में शांत होती हैं। इससे गर्म जल को सतह पर जमा होने में मदद मिलती है जिसके कारण ठंडे जल के जमाव के कारण पैदा हुए पोषक तत्वों को नीचे खिसकना पड़ता है और पलक जीवों एवं अन्य जीवों जैसे मछलियों का नाश होता है तथा अनेक समुद्री पक्षियों को भोजन की कमी होती है। इसे एल नीनो का प्रभाव कहते हैं जो कि विश्व व्यापी मौसम पद्धतियों के विनाशकारी व्यवधानों के लिए जिम्मेदार है। एक बार शुरू होने पर यह प्रक्रिया कई सप्ताह या महीने चलती है। एल नीनो अक्सर 10 साल में 2 या 3 बार, कभी कभी 3 बार भी आता है। एल नीनो हवाओं के दिशा बदलने, कमजोर पड़ने तथा समुद्र के सतही ताप में बढ़ोतरी की विशेष भूमिका निभाती है। एल नीनो का एक प्रभाव यह होता है कि वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं, परिणाम स्वरूप विश्व के ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने लगती है। कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। यह घटना दक्षिण अमेरिका में तो भारी वर्षा करवाती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति को उत्पन्न कर देती है। यह पेरू की ठंडी जलधारा को विस्थापित करके गर्म जलधारा को विकसित करती है। एल नीनो का भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि एल नीनो दक्षिण अमेरिका के तट पर अधिक सक्रिय है तो भारत में अनावृष्टि होती है। एल नीनो के कारण भारत में आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसके प्रभाव से देश के अधिकांश हिस्सों में कम बारिश होती है जिससे सूखे के हालात पैदा होते हैं। बारिश की कमी के कारण धान, मक्का और गन्ने जैसी खरीफ फसलों की पैदावार में भारी गिरावट होती है। एल नीनो के वर्षा में भारत में सर्दियों का मौसम कम

0: ठंडा होता है और गर्मियों में लू का प्रकोप बढ़ जाता है। अर्थ अल नीनो स्पेनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। इसे यह नाम पेरू के मछुआरे द्वारा दिया गया बाल ईसा के नाम पर दिया गया है, क्योंकि इसका प्रभाव सामान्यतः क्रिसमस के आसपास होता है, जो ईसा मसीह को मानते हैं उनका यह त्यौहार है। ला नीना स्पेनी भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ है छोटी बच्ची, क्योंकि इसका प्रभाव अल नीनो के विपरीत होता है, इसलिए प्रति एल नीनो भी कहा जाता है। ला नीना का प्रभाव, ला नीना अल नीनो से ठीक विपरीत प्रभाव रखती है। पश्चिम प्रशांत महासागर में अल नीनो द्वारा पैदा किए गए सूखे की स्थिति को ला नीना बदल देती है तथा अर्ध मौसम को जन्म देती है। ला नीना के अभिभाव के साथ पश्चिम प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से, वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया एवं समा उपरवर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। ला नीना परिघटना कई बार दुनिया भर में बाढ़ की सामान्य वजह बन जाती है। ला नीना के वैश्विक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखे जाते हैं, जो दुनिया भर में वर्षा, तापमान और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। एशिया और भारत, ला नीना आम तौर पर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को मजबूत करती है, जिससे औसत से अधिक वर्षा होती है। इससे जल संसाधनों और चावल जैसी फसलों का लाभ होता है, लेकिन पूर्वी भारत में बाढ़ भी आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में अधिक वर्षा होती लगती है। दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में अक्सर शुष्क परिस्थितियां भी रहती हैं। ला नीना अटलांटिक महासागर के तूफानों की गतिविधि को भी बढ़ा सकती है। अफ्रीका में सूखा पड़ सकता है, जिससे फसलें प्रभावित हो जाती हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में आम तौर पर अधिक वर्षा होती है, जो कृषि के लिए सहायक होती है, लेकिन बाढ़ के कारण यहाँ दिक्कत पैदा होती है। ला नीना के कारण भारत में सामान्य से बहुत अधिक बारिश होती है। इसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और तटीय क्षेत्रों में भयानक बाढ़ आती है। असर बाढ़ के लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं, बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, पुल, मकान नष्ट हो जाते हैं और भारी जान माल का हानि होती है। फसलों की बर्बादी का कारण है अत्यधिक वर्षा, जिससे कृषि को भारी नुकसान का सामना पड़ता है। ला नीना का प्रभाव केवल मानसून तक सीमित नहीं रहता, यह सर्दियों के मौसम को भी प्रभावित करता है। ला नीना के वर्षों में उत्तर पश्चिम भारत के शीत लहर का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात भी ठप हो जाते हैं। अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण जल भराव की स्थिति पैदा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। बाढ़ के बाद महीनों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर से फैलने वाली बीमारियां और हैजा, डायरिया जैसे पानी से होने वाली बीमारियां का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। इससे देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र को नुकसान और बुनियादी ढांचे के विनाश का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। फसलों के नष्ट होने से बाजार में सामान और सब्जियों की आपूर्तियों कम हो जाती हैं, जिससे खाद्य मुद्रा स्फीति, जिसे फूड इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। सरकार को राहत और पुनर्वास कार्यों पर भारी खर्च करना पड़ता है, जिससे बजटीय संतुलन बिगड़ जाता है। ला नीना यह साबित करता है कि प्रकृति में किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक हो सकती है। हालांकि यह भारत के जलाशयों को भरने और भूजल स्तर को सुधारने में मदद करता है, लेकिन इसके कारण अब ला नीना जैसी घटनाएं और अधिक तीव्र से अधिग्रसित होती जा रही हैं। इससे निपटने के लिए भारत को बेहतर आपदा प्रबंधन, जल निकासी प्रणालियों में सुधार और मौसम के अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाने की सख्त आवश्यकता है।
1: श्रोता, अभी आपने हमारे साप्ताहिक खंड विज्ञान वार्ता में आर्यन शुभम द्वारा प्रस्तुत एल नीनो और ला नीना का प्रभाव विषय पर रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। आशा है इस प्रस्तुति से आपको मौसम और जलवायु से जुड़े इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला होगा। अब बारी है विज्ञान वाणी का। विषय है आर्टेमिस 2 मिशन। यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। यद्यपि ये मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने का नहीं है, लेकिन भविष्य के मानव मिशनों, विशेष रूप से चंद्रमा पर दोबारा मानव अवतरण की तैयारियों के लिए यह बेहद अहम है। आर्टेमिस 2 का उद्देश्य अंतरिक्षयान, उसके जीवन रक्षक प्रणालियों और चालक दल की कार्यक्षमता का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण करना है। इस मिशन में उपयोग किया जाएगा ओरायन अंतरिक्षयान, जिसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन से प्राप्त अनुभव भविष्य के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए बेहद उपयोगी होंगे, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने और आगे चलकर मंगल ग्रह तक मानव मिशनों का मार्ग प्रशस्त करने में आर्टेमिस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आर्टेमिस 2 केवल एक अंतरिक्ष मिशन नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और मानव जिज्ञासा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि नई खोजों और नवाचारों के माध्यम से मानव लगातार अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ आज की विज्ञानवाणी यहीं समाप्त होती है। अब बारी है कार्यक्रम के सबसे मनोरंजक पड़ाव संगीत पहेली की। लेकिन नई पहेली की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले सप्ताह पूछी गई संगीत पहेली का सही उत्तर। पिछले सप्ताह हमने पहेली पूछी थी, आया तेरे दर पर दीवाना किस अभिनेता अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। इस पहेली का सही उत्तर है प्रीति जिंटा और शाहरुख खान। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सही उत्तर हमें भेजा। आपके उत्साह और सहभागिता के लिए हार्दिक धन्यवाद। तो अब तैयार हो जाइए इस सप्ताह की नई संगीत पहेली के लिए। पहले सुनिए आज का फिल्मी गीत, फिर उसी गीत से जुड़ा एक रोचक सवाल पूछा जाएगा। सही उत्तर हमें अपने नाम, पते और संपर्क विवरण के साथ भेजना ना भूलें। तो लीजिए पेश है आज का गीत।

और अब समय है इस सप्ताह की संगीत पहेली का। अभी आपने जिस खूबसूरत गीत को सुना, ये गीत किस फिल्म से लिया गया है? पहेली एक बार फिर सुन लीजिए, रब्बा मैं तो मर गया गीत को किस फिल्म से लिया गया है? अपने उत्तर हमें अपने नाम और पते के साथ भेजिए। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं का नाम अगले सप्ताह के कार्यक्रम में अवश्य लिया जाएगा, तो देर किस बात की, भेजिए अपना जवाब और बने रहिए युवाणी के साथ। अब समय है अगली संगीत पहेली का। पहले ये मधुर गीत सुन लीजिए।

मित्रों, अभी आपने एक और फिल्मी गीत सुना, अब बारी है उससे जुड़े एक रोचक सवाल की। पहली है, जान है मेरी गीत को अपनी मधुर आवाज से किस गायक ने स्वर दिए हैं। अपना उत्तर हमें अवश्य भेजिए। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 810001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है phairbhagalpur@gmail.com। तो सोचिए, पहचानिए और भेजिए अपना सही जवाब। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव फन फैक्ट की ओर। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि शिक्षा, मौसम की जानकारी, खेल, संस्कृति और जन जागरूकता का भी एक सशक्त माध्यम है। आज भी लाखों लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत रेडियो सुनकर करते हैं। अब बारी है आज के डेली ट्रिविया के सही उत्तर का। हमने प्रश्न किया था, रेडियो सुनने के लिए किस प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। इसका उत्तर है रेडियो तरंगों का। अब हम आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर आ गए हैं। बारी है समसामयिक खबरों की। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की आयु में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय T20 डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने। भारतीय नौसेना की लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान PH-1RIMPAC 2026 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने पहुंचा। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये समसामयिक खबरें आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिंदगी की भाग दौड़ में अपनों के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए, छोटी छोटी खुशियों को संजोइए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। आपकी एक मुस्कान किसी के चेहरे की खुशी बन सकती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी युवाणी के अगले अंक में। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर 2 का ये गीत। इस गीत को गाया था विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार ने। मनोज मुंतशिर ने इसके बोल लिखे थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अटैक से। इस गीत को गाया है जुबीन नौटियाल और शाश्वत सचदेव ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया है शाश्वत सचदेव ने ही, कुमार ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म गोलमाल फल अनलिमिटेड का ये गीत। इस गीत को गाया था शखर रवजियानी ने स्नेहा पंत के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए बंटी और बबली से, जावेद अली, शंकर महादेवन और अलीशा चिनॉय की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बंटी और बबली का गीत। अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ें थी, गुलजार ने इसके बोल लिखे थे और संगीत था शंकर, एहसान और लॉय का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण में एक वार्ता। विषय है वन महोत्सव सप्ताह, हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी संरक्षण। वार्ताकार हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आज संध्या 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार रंजीत कुमार पाठक की प्रस्तुति सुनेंगे आप। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो नाटक, शीर्षक है मेरी खामोशी, लेखिका है श्रीमती दीपशिखा और प्रस्तुतकर्ता है अरुण कुमार पासवान। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अंगिका, लोकगीतों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार। 10:30 पर आप सुनेंगे गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर किसान भाइयों और बहनों को संबोधित दैनिक कार्यक्रम खेत खलिहान लेकर आएंगे हम। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप एक भेंट वार्ता सुनेंगे। विषय है हेड इंजरी, लक्षण बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विकास शर्मा और भेंट करता है सचिन कुमार। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान।

प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार विजय कुमार दास की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:20 पर आप सुनेंगे काव्यांजलि में कवि देवानंद गुप्ता की प्रस्तुति। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ ज़रूरी सूचनाएं जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गायक कलाकार सुनील कुमार मिश्र की प्रस्तुति। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में

कलाकार पवन कुमार राम के गाए लोकगीत दिन में 11 बजे आप सुनेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से 11:30 पर हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता।

कल दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोग, 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 1 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में गायक कलाकार केदार प्रसाद कुशवाहा के गाय लोकगीत, 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, 3 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम रविंद्र संगीत में गायिका लोपमुद्रा मित्र की प्रस्तुति, संध्या 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम फिल्म संगीत, 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, 7:10 पर कल आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष भेंटवार्ता में एक भेंटवार्ता विषय है समेकित कृषि के लाभ, भेंटवार्ताकार है श्री मृगेंद्र प्रसाद सिंह और भेंट करता है कुसुमाकर दुबे। कल संध्या 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार उदय नारायण राय की प्रस्तुति, 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत की खास पेशकश एक ही फिल्म से और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है श्रोताओं आपका इस प्यारे कार्यक्रम में। सबको आज किशन का नमस्कार,
1: सबको शंकर का भी नमस्कार और किशन भाई साथ में आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार शंकर भाई, सुनाइए और सब क्या हाल समाचार हैं?
1: सब ठीक ठाक है किशन भाई। अब थोड़ी मौसम ने करवट ली है
0: जी,
1: जनमानस को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत तो मिली है
0: जी,
1: पर मौसम गर्मी का हो या ठंड का या बरसात का, हम सबों को बदलते मौसम के समय खास करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। और देखिए बारिश के गिरते ही मच्छरों का प्रभाव भी कुछ ज़्यादा ही दिखने लगता है
0: जी,
1: जिससे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है
0: जी।
1: इसलिए ऐसे समय में हमें शारीरिक साफ सफाई के साथ साथ अपने अपने घरों या घरों के आसपास के स्थानों, नालियों, जलाशयों की भी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
0: शंकर भाई कहते हैं जान है तो जहान है,
1: बिल्कुल
0: सब प्रकृति की देन है। हम इस प्रकृति में रहते हैं, इस प्रकृति की देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी ही है,
1: बिल्कुल।
0: और इस चराचर में बहुत सारे जीव जंतु हैं, मच्छर भी एक प्रजाति है। अब है इससे घबराना नहीं है, परहेज करना है, खास करके हमारा आवासीय स्थान, रहने का स्थान, आवासीय पर्यावरण ऐसे जगह पर होना चाहिए, ऐसे स्थिति में होनी चाहिए जहाँ पर अच्छी धूप, अच्छी हवा, अच्छी रोशनी और आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। खास करके स्थिर पानी ना रहे, गड्ढा गुड्ढी न रहे, कचरा उचरा न रहे, आसपास जो नालियाँ हैं या हमारे घर से जो पानी के अवशेष निकलते हैं बाहर, वो बहता हुआ जल हो, रुकने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। जहाँ जल रुकते हैं, ठहराव होते हैं, तो वहाँ पर फिर तरह तरह के कीटाणु का फिर पदार्पण होता है। और यदि कोई काट वाट ले तो फिर पता चला कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि प्लेटलेट्स घट गया है, तो ये इन्फ्यूजन चढ़ाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। चिकित्सा विज्ञान की चीजें हैं जो यदा कदा सुनते हैं। शंकर भाई अपने श्रोताओं से भी आग्रह करते हैं
1: और ऐसे समय में किशन भाई खास करके छत पर खुले ढक्कन वाले ना छोड़ें वो टंकी को
0: जी,
1: और
0: जी।
1: कुछ ऐसा बर्तन ना रखें वहाँ जिसमें पानी जमा हो जाए
0: जी, जी।
1: उसमें मच्छर पनपने की संभावना रहती
0: जी,
1: है
0: जी जी। बल्कि ऐसे ही पानी में, स्थिर और गंदे पानी में, बल्कि

0: सांप ऐसी बात नहीं, सांप पानी में भी पनपते हैं
1: बिल्कुल,
0: बट पानी का लेकिन जो जो ठहराव नहीं होना चाहिए, एक खास बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: और घर में यदि आप कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो इनका विशेष साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी बदलते रहें समय समय पे, और एसी का पानी जहां गिरता हो वहां कुछ कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहें।
0: जी, जी।
1: और किशन भाई आपने सही बात कही, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर वर्ष
0: जी
1: 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं।
0: जी वन महोत्सव,
1: हाँ
0: जी।
1: क्योंकि पेड़ पौधे के बिना हम पर्यावरण की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: इस सप्ताह के दौरान आम नागरिक हो या फिर निजी या सरकारी संस्थाएं, सभी मानसून के आगमन के साथ ही देशी पेड़ पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एकजुट दिखने लगते हैं।
0: जी।
1: और सप्ताह भर चलने वाले इस वन महोत्सव का आधिकारिक शुभारंभ 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री श्री के एम मुंशी द्वारा किया गया था।
0: जी जी।
1: जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के हर नागरिक कम से कम एक पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं।
0: जी।
1: और हमारे भारत में सिर्फ 21% जमीन पर ही जंगल विद्यमान है किशन भाई।
0: जी।
1: जबकि हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम 33% जंगल होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब जमीन पर पेड़ों की संख्या कम होगी तो गर्मी बढ़ेगी, बारिश कम होगी और बाढ़ आएगी, और जबकि पेड़ लगेंगे, अधिक से अधिक पेड़ होंगे तो हवा साफ होगी, पानी रुकेगा और पंछी लौटेंगे, है कि नहीं?
0: देखिए, शहरीकरण के कारण अंधाधुंध जंगलों की कटाई, वनों की कटाई, वृक्षों की कटाई हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: हमें कहीं ना कहीं चेतना पड़ेगा और सजग होना पड़ेगा। अभी तो मर्जी है कि बस काटे जाओ काटे जाओ, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज नहीं चेते तो कल प्रकृति आपको चेताएगी, नतीजा सामने होते हैं। जिन क्षेत्रों में, जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में इस तरह के असंतुलन की स्थिति है, वहाँ पर अनेक भयंकर प्रलयकारी स्थितियाँ आती रहती है।
1: बिल्कुल।
0: वो क्या कहते हैं, चक्रवाती तूफान हो या अत्यधिक वर्षा होना, ठंड पड़ना या खूब चिलचिलाती, सब इस प्रकृति में छेड़छाड़ का ही नतीजा है। रही बात घने जंगल, तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अनेक चीज़ें मिलती हैं इस प्रकृति में, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो प्रगति के बहुत सारे आधार,
1: यूं कहिए ना कि खाने पीने वस्त्र मकान हर चीजों में उसका सहयोग रहा है।
0: जी जी।
1: और उसके बिना हम अपने आधारभूत जो जीवन जीवनोपयोगी चीजें हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
0: जी जी,
1: है ना?
0: बिल्कुल। ये बिल्कुल हमसे, हमारे जीवन से, हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है। जरा सोचिए, हम यदि सांस नहीं लें, यानी कि प्राण वायु जो शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए इस जीवन को, इस दिल की धड़कन को चलाने के लिए, वो इन्हीं जंगलों, इन्हीं वृक्षों से हमें प्राप्त होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमें सजग होकर चेतते हुए लोगों में भी जन चेतना जगाना और दिशा में महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है।
1: और देखिए किशन भाई, अपने श्रोताओं को एक बात मैं याद दिला दूं
0: जी,
1: कि मात्र एक पेड़ एक साल में
0: जी
1: 200 किलो
0: जी
1: धूल को सोखता है
0: जी,
1: और 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है
0: जी।
1: और ठंडक की बात करें तो एसी जितना ठंडक देता है वो भी मुफ्त में
0: जी।
1: और इतना ही नहीं, जंगल हमें जलवायु संकट, भूजल संकट, जैव विविधता संकट से बचाने का एक अमूल्य और अचूक व्यवस्था है
0: जी।
1: इसलिए हम अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप अपने बच्चों को संरक्षण देकर पालने पोषने का काम करते हैं
0: जी,
1: उसी तरह पेड़ पौधों के लिए भी माँ बाप बनकर उसकी रक्षा व देखभाल करें, तभी आपका स्वास्थ्य, खान पान, मकान, सभी आधारभूत चीजें आपको आनंद से मिल सकती है।
0: जी जी,
1: है कि नहीं?
0: कार्यक्रम में और बातों की चर्चा करेंगे, बढ़िया से देवी गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करें।

0: शंकर भाई देखिए, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें यदि खास अनुभव हो तो उस क्षेत्र में आपको विशिष्टता हासिल हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: छोटा मोटा रोजगार हो, खेतीबाड़ी हो, जो भी हो, इसमें प्रशिक्षण आदमी को लेना चाहिए,
1: लेना ही चाहिए। बिल्कुल।
0: और उस क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति हैं आप उनका भी मदद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में आप स्थानीय सब और किसी विश्वविद्यालय के अनगिनत वैज्ञानिक हैं, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति सामान्य स्तर पर कोई रोजगार करना चाहते हैं तो हमारे जिला केंद्र पर एक लंबी सूची है, आप वहां जाकर के बारीकी से उसका मूल्यांकन करें। अच्छा, मूल्यांकन जो आपकी जिस क्षेत्र में आप सक्षम हैं या जिसमें आप दक्षता
1: है, आपकी रुचि है,
0: आप रुचि रखते हैं, तो आप उस दिशा में थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करके कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर से बेहतर करने का अवसर मिलता है
1: और लाभ भी अधिक मिलता है।
0: निश्चित रूप से एक बढ़िया सा वार्ता हम लोग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्षण कार्यक्रम एवं किसान डॉक्टर आसन सिंह क्या जानकारी देते हैं, आइए हम लोग भी अपने श्रोताओं के साथ ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुनते हैं।
1: जी,
2: विज्ञान ने आज की कृषि को उद्योग का रूप दे दिया है। जैसे अन्य उद्योगों में निरंतर विकास के लिए तकनीकी पद्धति में सुधार की आवश्यकता होती है, वैसे ही आधुनिक कृषि प्रणाली वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित है। उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी के लिए यह आवश्यक है कि लगातार नई तकनीक का प्रयोग किया जाए और पुरानी पद्धति में सुधार लाया जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान सतत प्रयत्नशील है कि कृषि की समस्याओं को सुलझाया जाए, विकास के नए मार्ग प्रशस्त किए जाएं तथा विकसित राष्ट्रों से भी कृषि की पद्धति का आयात किया जाए। हमारा कृषि अनुसंधान अपने प्रयत्न में काफ़ी सफल भी हुआ है, परंतु भारतीय कृषि की यह विडंबना है कि अनुसंधान के द्वारा जो कुछ हम प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी संपूर्णता के साथ खेतों तक नहीं पहुंचाया जा सका है। अनुसंधान प्रक्षेत्रों में जहां मुख्य फसलों की औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल रही है, वहीं किसान के खेतों में यह औसत 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में पड़ी हुई है। सिद्धांत एवं प्रयोग के बीच के इस बड़े अंतर को पाटे बिना कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना एवं कृषि को उद्योग का रूप देना संभव नहीं हो पा रहा है। विगत वर्षों में हमने निरंतर प्रयास किया कि अनुसंधान को सही ढंग से खेतों तक पहुंचाया जाए, परंतु आशातीत सफलता नहीं मिली। इस दिशा में हमने कुछ नए प्रयोग एवं प्रयास किए हैं। प्रशिक्षण एवं परिदर्शन इसी प्रयास का एक रूप है। आज की चर्चा में मैं आप किसान भाइयों को इस पद्धति से परिचित कराना चाहूँगा। कृषि के क्षेत्र में किसी भी प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि अनुसंधान प्रसार एवं कृषक समुदाय सम्मिलित रूप से एवं पूर्ण लगन के साथ उसकी सफलता में अपना योगदान दें। इस उद्देश्य से आवश्यक हो जाता है कि जो पद्धति अपनाई जा रही हो उसका पूरा ज्ञान किसानों को हो, जिससे वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। प्रशिक्षण एवं परिदर्शन की ऐसी पद्धति है जो एक ओर तो अनुसंधान के लाभ को निरंतर किसानों तक पहुंचाती है और दूसरी ओर किसानों से उनकी समस्याओं का पता लगाकर उसका हल ढूंढने के लिए अनुसंधान कार्यकर्ताओं तक पहुँचाती है। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य है कि जो प्रसार कार्यकर्ता किसानों से सीधे संपर्क में हैं उन्हें वैज्ञानिक कृषि प्रणाली एवं आधुनिक तकनीक की पूर्ण जानकारी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों स्तरों पर मिलती रहे। प्रशिक्षण एवं परिदर्शन की पद्धति को पहली बार विश्व बैंक की सहायता से 1974 में लागू किया गया। बिहार में इस पद्धति की शुरुआत 1978-79 में की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक महीने में एक बार प्रसार पदाधिकारियों को वैज्ञानिक कृषि प्रणाली की प्रगति के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित प्रसार पदाधिकारी माह में दो बार प्रखंड स्तर एवं ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। प्रसार कार्यकर्ताओं का यही वर्ग वह जरिया है जो अनुसंधान के प्रतिफल को अंतिम रूप में किसानों के बीच पहुंचाया जाता है। ग्राम स्तर के प्रसार कार्यकर्ता के क्षेत्र को भी 8 से 10 वर्गों में बांट दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक माह में दो बार प्रत्येक टोली के किसानों से उनके खेतों में ही संपर्क स्थापित किया जाए। वहीं उस समय की खेती से संबंधित जानकारियों उन्हें दी जाए तथा उनकी समस्याओं का पता लगाया जाए। यदि उनकी सभी समस्याओं का निदान करने में ग्राम स्तर के प्रसार कार्यकर्ता सक्षम नहीं हों तो वे उन समस्याओं को पाक्षिक बैठक में प्रसार अधिकारियों तक पहुँचाएँ। ये प्रसार पदाधिकारी या तो स्वयं समस्या का निदान करेंगे अथवा मासिक बैठकों में कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कर समस्या का निदान प्राप्त करेंगे तथा उसे संबंधित किसानों तक पहुंचाएंगे। इस पद्धति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रखंड, जिला एवं प्रमंडल स्तर के प्रसार पदाधिकारी भी कभी न कभी प्रत्येक गाँव एवं किसानों की टोलियों से मिलेंगे, अनुसंधान की जानकारी देंगे, जनसेवकों के कार्य की समीक्षा करेंगे तथा प्रशिक्षण एवं परिदर्शन पद्धति से हुए लाभ के विषय में किसानों के विचार जानेंगे। इस पद्धति में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक गांव की विभिन्न टोलियों में संपर्क किसान बनाए जाएं। हमारा उद्देश्य यह है कि कुछ प्रगतिशील किसानों को प्रेरित किया जाए कि नई प्रणाली को अपने खेतों में पहले प्रयोग करें तथा उसी आधार पर अन्य किसानों को भी उन विधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करें। संपर्क किसानों की सक्षमता, लगन एवं कार्य में रुचि को देखा जाता है। यदि कोई संपर्क किसान इस पद्धति में रुचि नहीं दिखलाते हैं अथवा किसानों को कृषि की नई तकनीक बतलाने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो मौसम के प्रारंभ में उन्हें बदला भी जा सकता है। किसानों की समस्याओं के निदान के लिए कृषि विश्वविद्यालय के स्तर पर अनुसंधान कार्य तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ इस पद्धति में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपयोगी अनुसंधान की शाखा खोली जाए। जिला स्तरीय उपयोगी अनुसंधान में किसानों की तत्कालिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसान अपने खेतों के नज़दीक हो रहे अनुसंधान कार्य को देख सकें तथा उसमें रुचि रखें। अनुसंधान के फल को प्रत्यक्ष रूप से देखकर किसान उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। प्रशिक्षण एवं परिदर्शन पद्धति किसानों के बीच काफ़ी सफल हो रही है। हमने देखा है कि इस पद्धति को लागू करने के बाद क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक की खपत बढ़ी है, उच्च फलनशील किस्में अधिक क्षेत्रों में लगाई जाने लगी हैं, कीट एवं रोगनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है एवं किसान गर्मा मौसम में मूंग एवं कलाई की फसलें लेकर साल में 2 के बदले 3 फसलें उगाने लगे हैं। परंतु इस पद्धति का पूर्ण लाभ तभी हो सकता है जब किसान स्वयं इसमें पूरी रुचि लें। आप किसान भाइयों को यह जानना है कि प्रसार कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से आपसे संपर्क स्थापित करना है। समय समय पर प्रखंड स्तर, जिला एवं प्रमंडल स्तर के प्रसार पदाधिकारियों को आपसे मिलना है। ये प्रसार पदाधिकारी आपसे आपकी समस्याओं को जानने एवं उसका निदान करने के लिए मिलेंगे। अतः आपका दायित्व है कि आपकी जो भी कृषि समस्याएं हैं उनकी सूची बनाकर रखें और ग्राम स्तर या उसके ऊपर के स्तर के प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से अनुसंधान कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दें। या तो आपकी समस्याओं का तुरंत हल बतला दिया जाएगा अथवा यदि आवश्यक हुआ तो उस समस्या के निदान के लिए नए अनुसंधान कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षण एवं परिदर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसमें माह में कम से कम एक बार किसान से लेकर अनुसंधान तक एक सूत्र बन जाता है। पहले की किसी भी प्रणाली में ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं थी। अंत में मैं किसान भाइयों से पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण एवं परिदर्शनों की पद्धति है और आपके बहुमुखी विकास के लिए ही प्रारंभ की गई है।
0: जी, बड़ी अच्छी बातों की जानकारी मिली शंकर भाई। प्रशिक्षण
1: और
0: देखिए प्रत्यक्षण कार्यक्रम,
1: हमारे जीवन में संगीत का भी बहुत बड़ा महत्व है।
0: जी जी
1: किशन भाई, और कहते हैं कि जब उदासी की बात हो या खुशी की बात हो
0: जी,
1: तो बिना गीत से आनंद नहीं मिलता है ना।
0: हमारे क्षेत्रीय स्तर पर यदि हम देखें, संगीत तो है ही, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, रविंद्र संगीत हो, या फिल्मी गानों का कार्यक्रम होता है, वो भी संगीत है। लेकिन जो लोक गीत की अपनी विधा है शंकर भाई, चाहे झूमर हो, कजरी हो, पूर्वी हो, सोहर हो, मंडप शादी ब्याह के अवसर पर गाने वाले गीत, सब गीत का जो अपना पारंपरिक महत्व और जो सुनने में आनंद आता है बड़ा ही
1: और ऐसे भी देखिए संगीत यदि देखा जाए तो मानसिक हो या शारीरिक,
0: जी जी
1: दोनों चेतना को जगाता है वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यदि कहें कि ब्रह्म प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है तो कोई दो मत नहीं।
0: जी जी
1: है ना, कोई भी साधु संत भी हुए तो उन्होंने सुर में ही
0: जी
1: ओम का उच्चारण किया और साधना की।
0: बढ़िया से झूमर सुनते हैं।
1: आइए एक झूमर सुन लेते हैं।

0: नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब हम लोग किसान भाइयों के लिए कुछ खेती बाड़ी की भी चर्चा करते हैं शंकर भाई।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: देखिए, अभी कुछ समसामयिक जो होनी चाहिए खेती बाड़ी में, उसके बारे में कृषि वैज्ञानिकों के क्या निर्देश हैं, उसके बारे में जरा बताइए।
2: जी जी किशन भाई, तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: जी, बड़ी अच्छी
2: अधिकतम
1: बात है।
2: तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है।
1: अभी भी गर्मी बरकरार ही
2: रहेगा। जी जी बिल्कुल। और सापेक्ष आर्द्रता प्रातः काल में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है।
1: यह मौसम रहा।
2: जी, पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी हवा चलने का भी अनुमान है किशन भाई। और रही बात समसामयिक सुझाव का, तो पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ उठाते हुए
1: जी
2: धान की सबौर दीप किस्में जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक किसान भाई कर लें। और बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजीम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निकाई कुड़ाई करते रहें। मध्यम अवधि वाली किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं यदि आपका बिचड़ा तैयार हो गया है तो। धान की किस्में सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं आप
1: जी।
2: बात आती है अब अरहर की, तो ऊंचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें किशन भाई। अभी समय धान के साथ साथ अरहर की बुआई का भी चल रहा है, इसलिए बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास तथा 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग अवश्य करें
1: जी।
2: अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और हमारे किसान भाई देखिए खेती गृहस्थी के साथ पशुपालन भी करते हैं
1: जी।
2: तो माह के अंत तक भैंसों का ब्यात शुरू हो जाता है, तो ब्याने वाले पशु का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगाएं, हो तो इस माह में अवश्य लगवा लें।
1: चलिए, बढ़िया बढ़िया जानकारी के बाद किसान भाई एक बढ़िया सा झूमर सुने, फिर और खेतीबाड़ी की चर्चा आपसे जारी रहेगी।

0: शंकर भाई, देखिए विज्ञान का तो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में।
1: बिल्कुल
0: हाथों में जो हम कुछ बातचीत के लिए यंत्र या साधन जो उपयोग करते हैं, ये भी विज्ञान के एक आविष्कार हैं, बहुत ही सुंदर आविष्कार हैं, महत्वपूर्ण आविष्कार हैं। इसी तरह हर क्षेत्र में, धरती से लेके आकाश तक, जहाँ भी हमारी नज़र पड़ती है, हम कह सकते हैं कि सिर्फ विज्ञान ही विज्ञान है,
1: बिल्कुल
0: और इस विज्ञान के आधार पर ही हम कुछ आधुनिक चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
1: और इससे
0: उसका
1: कई
0: उपयोग कर
1: फायदे भी
0: सकते
1: हैं
0: हैं।
1: कि जो
0: जी
1: काम हमारा बहुत देर से हुआ करता था वो
0: जी
1: अब
0: जी
1: जल्दी हो रहा है।
0: ग्रामीण विकास में विज्ञान इस विषय पर चिंतामणि मंडल क्या कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं, हम लोग जरा अपने श्रोताओं के साथ ध्यानपूर्वक इस विज्ञान की बात को सुनते हैं।
2: भारत की आत्मा और हृदय गांवों में बसते हैं। देश की जनसंख्या का 3/4 हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास करता है। राष्ट्र तभी शक्तिशाली एवं समृद्ध हो सकता है जब राष्ट्र गरीबी एवं पिछड़ेपन से मुक्त हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना आवश्यक है। ग्रामीण भारत में अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभ आधुनिक कृषि, औद्योगिक और श्रम सेवाएं एक दूसरे के सामंजस्य के साथ विद्यमान हो, तभी ग्रामीण विकास की कल्पना की जा सकती है। इस सपने को पूरा करने के लिए आधुनिक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण है। यह सुविकसित, सबल और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की आवश्यकता है। देश के गांव आज विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। इनमें कृषि के अंतर्गत विज्ञान के नई तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। दूर संचार के साधन, शहरों को जोड़ती सड़कें, तेजी से होते विकास के कारण अब गांवों का विकास देश के बड़े प्रतिष्ठानों, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, स्वैच्छिक संगठनों से जुड़ाव कायम कर सकता है, और इन सब के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अहम स्थान है। ग्रामीण विकास हेतु कंप्यूटर, इंटरनेट और दूर संचार सुविधाओं को एक बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 1.5 दशक के दौरान आई आर्थिक बेहतरी ने इन सुविधाओं के प्रसार के लिए वातावरण काफी अनुकूल हो गया है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, आम आदमी की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, शिक्षा का प्रसार हुआ है और जागरूकता का स्तर भी बेहतर हुआ है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी और जमीनी स्तर पर हो रहे बदलाव एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। सरकारों तथा संस्थाओं के लिए नई तकनीकी ग्रामीण जनता माध्यम बन रही है। इस कारण कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक व्यवहारिक, समावेशी और परिणामोन्मुखर बनने में मदद मिलती है। ये सभी योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में तकनीकी सुविधाओं, दूर संचार तथा इंटरनेट का व्यापक प्रसार करना है। ऐसी योजनाओं में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रधान भूमिका होती है। कुछ निजी क्षेत्र ने भी इसके योगदान में सहयोग किया है। आज राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायतों में कंप्यूटर उपलब्ध करा रही है, जो ग्रामीण विकास के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। आईटी कंपनी ने बेरोजगार ग्रामीणों को तकनीकी कामों का प्रशिक्षण देकर नौकरियां भी देनी शुरू की है। आज तकनीकी के उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभाग भी पहले से बेहतर है। प्रशासनिक औपचारिकताओं तथा जरूरतों को पूरा करने में इंटरनेट की अहम भूमिका है। ई प्रशासन जैसे परियोजना न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे का सरलीकरण करने में मदद कर रही है, बल्कि प्रशासन तक ग्रामीणों की पहुंच भी बना रही है। इंटरनेट संचार सर्वेक्षण, शिकायतों, फीडबैकों, विचार विमर्शों आदि का आसान जरिया बन रहे हैं। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से कृषि के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है, जिससे कृषि कला में सुधार आया है और व्यापारिक स्तर प्राप्त हुआ है। भारतीय किसानों के जीवन स्तर में उन्नति हुई है। विस्तृत कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, हस्तांतरित कृषि और हरित कृषि के कारण विश्व में भारतीय किसानों की छवि सम्माननीय बन गई है। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था, श्रम में कमी आदि से किसानों की दयनीय दशा में भारी सुधार हुआ है। वे अपने आर्थिक स्रोत बढ़ाने में भी सफल हो पाए हैं। आज

0: भारत अन्य देशों को खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब शहरों जैसा विद्युत उपलब्ध हो गया है, ये सभी आधुनिक विज्ञान की ही तो देन है। अच्छी सड़कों और रेल मार्गों के निर्माण से गांव शहरों एवं नगरों के करीब आ गए। डाक एवं तार प्रणाली ने गांवों को नवीन रूप प्रदान किया है। आधुनिक तकनीक से मशीन पर आधारित जीविकाओं में बढ़ोतरी हुई है। आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाओं के कारण गांव के युवकों का शहर की ओर पलायन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर बढ़ी है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुतगामी एवं निरंतर विकास के लिए कटिबद्ध है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में संलग्न है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को अपना जीवन स्तर सुधारने के योग्य बनाना है। गरीबी उन्मूलन तथा त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ विकास कार्यक्रमों को एक विविधतापूर्ण रणनीति द्वारा समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग तक पहुंचने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें पेयजल, ग्रामीण आवास, सड़क संपर्क, शिक्षा एवं रोजगार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। निजी क्षेत्र की आईटीसी कंपनी की ओर से स्थापित विशाल ई चौपाल नेटवर्क के तहत 10 राज्यों के करीब 40,000 गांवों को इंटरनेट एवं कंप्यूटर के माध्यम से खेती से जुड़ी हर तरह की सूचनाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो बेहतर उपज पैदा करने से लेकर अच्छे दामों में बेचने में भी मदद कर रहा है। मोबाइल नेटवर्क किसानों को खेती करने के सही तरीके, मिट्टी का सत्यापन एवं कृषि से संबंधित अनेक जानकारियां उपलब्ध करा रही हैं। संचार तकनीकी ई सेवा के माध्यम से ग्रामीण लोग प्रशासन से जुड़े कार्यों को आज संपादित कर रहे हैं। मासिक बिल जमा करना, परमिट और लाइसेंस, परिवहन, आरक्षण, फॉर्म डाउनलोड करना, इस तरह की सेवा इस संचार तकनीकी का ही देन है। किसान राजा परियोजना के द्वारा वायरलेस तकनीकी का उपयोग कर सिंचाई कार्य में आने वाले मोटरों को नियंत्रित किया जाता है। विज्ञान के इस तकनीकी से ग्रामीण जनता काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। भूमि दस्तावेजों में भी ऑनलाइन कंप्यूटराइज के माध्यम से खरीद एवं बिक्री संभव है। इस तकनीकी के द्वारा ज़्यादातर ग्रामीण विकास के कार्यों का संपादन किया जाता है। स्थानीय भाषाओं द्वारा कृषि उत्पाद खरीद बिक्री, बाजार की संभावनाओं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आदि कार्यों हेतु परामर्श दी जा रही है। दृष्टि योजना के द्वारा बीमा, स्वास्थ्य, वित्त सेवा, कॉमर्स की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो ग्रामीण विकास की एक कड़ी है। इसके अलावे डिजिटल पंचायत का संचालन भी वैज्ञानिक तकनीकी से किया जा रहा है, जो प्रशासन एवं आम आदमी के बीच संबंध को कायम करने में मदद करता है। विद्यालय एवं महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास का प्रचलन विज्ञान तकनीकी का ही देन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान तकनीकी से गांवों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। भारतीय गांवों को सशक्त आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आधार भूमि और नवीन आयाम प्रदान करने में निश्चित रूप से आधुनिक विज्ञान तकनीकी का महान योगदान है। आज ग्रामवासियों का जीवन नए लक्ष्यों और नई आशाओं से भरा हुआ है, क्योंकि वे शिक्षित हैं और वे नई तथा विकसित तकनीकी प्रणाली का प्रयोग कृषि एवं अन्य उद्योग धंधों में कर रहे हैं। यह सब आधुनिक तकनीकी का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप आज ग्रामीण जनता फल फूल रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, उनके सर्वांगीण विकास से हमारे राष्ट्र का विकास हो रहा है।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई
2: जी।
1: और हम लोग लगे हाथों एक कृषि गीत सुन लें क्या?
2: हाँ, चलते चलते जरूर।
1: हाँ, तो आइए कृषि गीत सुनते हैं।
3: तो है अलग एक विशिष्टता है, अलग एक खुशबू है।

0: गछिया हो चमक गछिया आम फर लेंगे बहिना चमक गछिया आम फर लेंगे बहिना चमक गछिया।
1: हाँ भाई, आम फरेगा तो चमकेगा ही, गछिया चकाचक किसान भाइयों का भी होगा, आमदनी बढ़ेगी। कल के कार्यक्रम में और बातों की चर्चा के साथ हम अपने श्रोताओं के साथ उपस्थित होंगे। आज यहीं अनुमति लेते हैं। सबको किशन का नमस्कार,
2: सबको शंकर का भी नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डूरंड कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष डूरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के अलावा इस साल डूरंड कप की मेजबानी रांची भी करेगा। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से रथ यात्रा मार्ग तथा मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने रथ यात्रा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने, पर्याप्त चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने कहा कि रथ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए रथ यात्रा महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित रसदा गांव में विस्थापन समस्या को लेकर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापित ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कहा कि विकास भी जरूरी है, लेकिन विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है।
2: विस्थापन की समस्या झारखंड राज्य अलग मनोथा जो विरासत पे ये समस्या झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ और विकास के नाम पर अगर उनकी जमी कोई ऐसे कंपनी लेता हो तो उससे विस्थापित जो हुए हैं उनकी रक्षा भी करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अनुप कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलको और शिव पूजन पाठक ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने सभी आयुक्तों को शुभकामनाएं देते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है तथा राज्य सूचना आयोग की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं की ओर से संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल से किसानों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 180% अधिक मूल्य मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड की CBI जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और घटना के समय मौजूद पुलिस कर्मियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। राज्यपाल से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया गया।
3: जो जमशेदपुर में विगत 27

अर्जुन को, जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में दो युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया, और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का भी इलाजरत है,

0: की दी जाएगी। श्रीमती तिर्की आज हजारीबाग में पिछले 29 जून से आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने राज्य के कम वर्षा क्षेत्र के लिए रिलीफ फंड जारी करने की मांग केंद्र सरकार से की।
1: वर्ष एल नीनो का असर पड़ने वाला है। सभी किसानों से निवेदन है कि सही समय में बिचरा कर मेरे कोई बंदी करे ताकि पानी को लोग सुरक्षित रख पाए। आज मिशन का भी रजिस्ट्रेशन किसानों का कराना शुरू किया। आज पूरे राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लगभग सभी किसानों को जो मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें 3,000 रुपया प्रत्येक एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी।
0: बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। मौसम। पिछले 3 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से किसानों में जहां हर्ष है वहीं आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने रांची मौसम केंद्र ने 10 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डोरंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डोरंट कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक वार्ता। विषय है वन महोत्सव सप्ताह, हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण। वार्ताकार हैं डॉक्टर किरण कुमारी।
3: आज मुझे हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण जैसे विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है। श्रोताओं, पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है जो हमें वायु, जल, भोजन और जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करती है। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में आज हरित पहलों पृथ्वी के संरक्षण का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। हरित पहल से आशय उन कार्यों और नीतियों से है जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, प्रदूषण में कमी और जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसे बचाने के लिए हमें जागरूक होना होगा। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा, जैसे वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण। श्रोताओं, जब हम अपने चारों ओर फैली हरियाली, स्वच्छ वायु, वर्षा की शीतल फुहारों और प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं तब शायद यह एहसास होता है कि इन सब के पीछे वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ाते बल्कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और

पर्यावरणीय संतुलन के ये आधार भी हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके। वर्तमान समय में जब संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, जैव विविधता के क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब हमें वृक्षारोपण और वन संरक्षण की आवश्यकता अधिक हो जाती है। वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण कई सरल और प्रभावी तरीकों से किया जा सकता है। यदि हम अधिक से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें, साथ ही बिना अनुमति पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर यदि उसे कानूनों के द्वारा पालन कराया जाए, जंगलों में आग लगने से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के द्वारा इसे निगरानी और समय पर कार्रवाई करके हम लोग वन का संरक्षण कर सकते हैं। सड़क किनारे, विद्यालयों और खाली भूमि पर पौधारोपण कर सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों को वनों का महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के द्वारा भी संरक्षण किया जा सकता है। कागज का और लकड़ी का विवेकपूर्ण उपयोग करके तथा कागज का पुनर्चक्रण करके भी हम संरक्षण कर सकते हैं। वनों में रहने वाले जीव जंतुओं और उनके आवासों का भी हमें रक्षा करना होगा। स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण अभियानों से जोड़कर भी हम पृथ्वी का संरक्षण कर सकते हैं। यदि हम जल संरक्षण की बात करें तो जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण आज जल का संकट बढ़ता जा रहा है। आज यह एक गंभीर मुद्दा बन गई है। जल संरक्षण, वर्षा का जल का संचयन करके उपयोग किया गया जल को पुनर्चक्रित करके किया जा सकता है। नलों को अनावश्यक रूप से खुला नहीं छोड़ना, खेतों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करके तालाबों, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जिससे भूजल का स्तर बढ़े, हम इस तरह से जल का संरक्षण कर सकते हैं। इससे हमारे भविष्य में आने वाली नई पीढ़ियों के लिए जल हमेशा उपलब्ध रहेगा। जल संकट और सूखे की समस्या कम हो सकती है तथा हमारा पर्यावरण हमेशा संतुलित रहेगा। जल है तो कल है, जल का प्रत्येक बूंद अमूल्य है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जल संरक्षण को अपनी दैनिक आदत बनाए। यदि हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें तो इससे भी हमारी पर्यावरण संतुलित रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्लास्टिक सामग्री बहुलता में सामने आई। यह सामान ढोने से लेकर बोतल, खिलौने, पाइप निर्माण सामग्री इत्यादि के रूप में सामने आया। चूँकि प्लास्टिक का निर्माण पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन से होता है, जो कि यह जहरीली रसायन जमीन एवं जल के अंदर पहुँच जाती है। जानवर जो प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारा जलीय जीव, मछलियों, समुद्री पक्षियों को ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। हमें इसे संतुलित करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक का त्याग करना होगा, साथ ही कपड़े या जूते

के थैलों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। जहाँ कहीं भी आप जाएं, तो अपने साथ एक थैला अवश्य रखें। प्लास्टिक कचरे की मात्रा न्यूनतम करने हेतु अभी सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इसमें प्लास्टिक उत्पादकों को नई जवाबदेही भी दी गई है कि वे कचरे को जमा कर सड़क निर्माण में इस प्लास्टिक कचरा का उपयोग करें। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। ऊर्जा हमारे जीवन को शक्ति प्रदान करती है। बिजली से लेकर परिवहन तक ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऊर्जा का अधिकांश स्रोत हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। यदि हम ऊर्जा को विभिन्न रूपों का अन्वेषण करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि जैसे स्वच्छ स्रोतों के साथ प्रयोग करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और नवीन सोच के साथ हरित प्रौद्योगिकियों की ओर विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। आज के दिनों में जैविक अपशिष्ट एवं जैविक कचरे से जैविक ईंधन बनाना सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बायोगैस एक निम्न कार्बन तकनीक है जो जैविक कचरे से स्वच्छ पूर्ण चक्रीकरणीय बायोगैस उत्पन्न करती है। बायोगैस जानवरों के गोबर एवं अन्य जैविक पदार्थ जैसे पत्तियां आदि अन्य के ऑक्सीजन रहित पाचन क्रिया से निकलती है एवं यह खाना बनाने, रोशनी, शीतलीकरण, विद्युत ऊर्जा एवं यातायात में ऊर्जा ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आज के हमारे युवा पीढ़ी स्वच्छ, स्मार्ट और टिकाऊ ऊर्जा से संचालित भविष्य को आकार देने में हमारी मदद कर सकते हैं। श्रोताओं, अपशिष्ट बंद प्रबंधन की बात करें तो आज शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अत्यधिक उपभोग के कारण कचरा पैदा होने में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। हम अपने कचरे के उपयोग को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। जब भी और जहां भी संभव हो, चीज़ों का कुशलता से पुनर्उपयोग कर सकते हैं, कचरे से उपयोगी सामग्री निकाल सकते हैं, उत्पादों को लंबे समय तक उपयोग के लिए फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं और नई चीज़ें बनाने के लिए सामग्री का पुनर्चक्रण कर हम कचरे का बेहतर प्रबंधन कर पृथ्वी का संरक्षण कर सकते हैं। इन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण तो होता ही है, साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास के क्रम में पर्यावरण की कम हानि होती है। अतः अपशिष्ट प्रबंधन हमारे सतत विकास के विचार से गहरे रूप से जुड़ा है। जैव विविधता का संरक्षण। वन जैव विविधता के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक वन्य जीव, पक्षी और वनस्पतियाँ अपने अस्तित्व के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। जैव विविधता किसी भी परितंत्र की स्थिरता और उत्पादकता का आधार होती है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो उसके दुष्प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। इनका संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन, खाद्य सुरक्षा और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता संरक्षण के लिए हमें वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा और जहाँ पेड़ नष्ट हो गए हैं वहाँ वृक्षारोपण करना होगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण करना होगा। संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण एवं प्रजनन कार्यक्रम को चलाना होगा। साथ ही लोगों में जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना होगा। इससे हमारा पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी सहायता करेगा। जैव विविधता का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखेगा। यदि हम सभी मिलकर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं

0: और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें तो पृथ्वी पर जीवन लंबे समय तक संतुलित और समृद्ध बना रहेगा। लास्ट, जैविक खेती की अगर हम बात करें तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक विधियों से खेती कर हम पृथ्वी का संरक्षण कर सकते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आज जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक एवं पीड़कनाशी रसायन की जगह पर कंपोस्ट खाद, हरित खाद एवं अस्थि चूर्ण का उपयोग एवं कीट नियंत्रण के लिए जैव पीड़कनाशी का उपयोग किया जा रहा है। आज सतत विकास के संदर्भ में कृषि पारितांत्रिक विधि से फसल लेना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। इन विधियों में मिट्टी के स्वास्थ्य को परितंत्र की प्रक्रिया द्वारा टिकाऊ बनाया जाता है। स्वस्थ जीवन शैली की चेतना के संदर्भ में भारत में जैविक फार्म उत्पादन एवं इनका व्यापार आज भारत में एवं विश्व के अन्य देशों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। हरित पल के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा का प्रयास नहीं, बल्कि मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेवारी भी है। इसीलिए हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम हरित पहलों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हरित पृथ्वी ही सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की आधारशिला है।
1: आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपने सुना एक वार्ता। विषय था महोत्सव, वन महोत्सव सप्ताह, हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण। वार्ताकार थी डॉक्टर किरण कुमारी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पहलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू। मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव के रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी एनडीए की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री चौधरी आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ, आतंकवाद और अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।
1: दो चीजों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी साथ। क्योंकि अपराध को, अपराधी को जाना होगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है साथियों, उसी तरह घुसपैठियों के लिए भी कोई जगह नहीं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांचल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज में अगले वित्तीय वर्ष में एयरपोर्ट निर्माण शुरू हो जाएगा, साथ ही जल्द ही अररिया को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भी सौगात मिलेगी।
1: हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, इस पूरे जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ से पूरे जमीन की व्यवस्था करके दे दिया है, और हम लोगों ने भी तय कर दिया है अगले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर एयरपोर्ट का काम भी शुरू करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। किसी दिन आएंगे और आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने का काम करेंगे साथियों।
0: श्री चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अब तक 4,53,000 लोगों ने आवेदन किया। इसमें मात्र 27,000 आवेदन ही लंबित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और इसके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश की सभी पंचायतों में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों, बाईपास और सुरंगों पर टोल टैक्स देना होगा। सरकार ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर नई टोल नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा, निजी वाहनों को किसी प्रकार का टोल नहीं देना होगा।
1: कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है, बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा।
0: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि अलग अलग सड़कों के लिए वाहनों की श्रेणी के हिसाब से टोल टैक्स का निर्धारण किया गया है।
2: नई व्यवस्था के तहत 2 लेन से अधिक और 4 लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। चार लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% और 4.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर 50% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले बाईपास और सुरंगों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि टोल टैक्स सिर्फ उन्हीं रास्तों पर लागू होगा जहां वैकल्पिक मार्ग की सुविधा नहीं है। टोल की वसूली फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, दोपहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों, तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों को टोल टैक्स से नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 3 गुना तक जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। अभिषेक कुमार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
3: मेरे जैसा कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। आज भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व पर भरोसा किया है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी बांकीपुर के कार्यकर्ता, बांकीपुर की जनता का।
0: गौरतलब है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को जबकि जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है। जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी और शोषित समाज दल ने सिकंदर कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पटना में 10 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा।
4: पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में रहेंगे, एनडीए के सारे मंत्री रहेंगे और जो सीनियर लीडर हैं सारे लोग रहेंगे और पर्पस एक ही है, जो सरकार काम कर रही है उनसे भी फीडबैक लेना हर एक जिला का, जो सरकार का काम काज कैसे चल रहा है। और उस बैठक में नीतीश जी भी रहेंगे और मेरे ख्याल से पूरा एनडीए का उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है वो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा करके अगले 5 साल में ये सरकार करके दिखाई।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी।

0: विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने सुपौल से दरभंगा तक पेड़ियामंच और मधेपुर होते हुए नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी TPR तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस संबंध में पत्र जारी कर जल्द से जल्द TPR तैयार करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया। देश में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि E20 ईंधन पूरी तरह परीक्षण के बाद लागू किया गया है और इससे वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों और वाहन निर्माताओं के परीक्षणों में E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया। माइलेज में इथेनॉल की कमी ऊर्जा क्षमता के कारण मामूली कमी संभव है, लेकिन वाहन के प्रदर्शन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से बैजू कुमार झा।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को 24 घंटे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सुविधा मिलेगी। आज पटना में LNJP अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: हमने कहा है इन्हें कि रेडियोलॉजी जो है CT स्कैन MRI वो 24 घंटे होना चाहिए और पैथोलैब जो होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, उसको भी 24 घंटा होना चाहिए। और समाधान कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट को दवा मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, उनका CT स्कैन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी की सुविधा मिलनी चाहिए उन्हें, और उनका जो है डॉक्टर जो है टाइम से ड्यूटी पे रहे वो करें।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वी चंपारण जिले के फेनहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालू पाकर गांव में मोहम्मद कलामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने उससे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद कलामुद्दीन पर युवकों को झांसा देकर कंबोडिया भेजने का आरोप है। इस मामले में उसे 13 जुलाई को पटना में पेश होने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंचल नगर गांव में एक निर्माणाधीन चहारदीवारी के पास बम विस्फोट हो गया। धमाके में 2 लोग घायल हो गए, जिनका DMCH में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के मठियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाला सिंघमा के पास पुलिस और TIU की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मधुबन स्थित एक किराना दुकान से पुलिस और SDF की टीम ने 30 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पटना के हाथीदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 1 किलो गांजा और 1 पिस्तौल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमावर्ती इलाके से SSP और पुलिस की टीम ने यूक्रेन की एक महिला को गिरफ्तार किया है। वे बिना वैध कागजात के नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी। बरौनी रिफाइनरी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर सदर डीएसपी आनंद पांडे ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंदोसी गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी बच्चू राम को गिरफ्तार कर लिया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में बांका जिले को राज्य भर में पहला स्थान मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू, मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी एनडीए की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
1: बेगूसराय के कारगिल भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार, तेघरा के विधायक रजनीश कुमार, बछवारा के विधायक सुरेंद्र मेहता, जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, मंडल अध्यक्ष तथा बड़ी संख्या में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया।
2: नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने दो निशान, दो प्रधान, दो विधान को हटा करके एक देश एक निशान, एक प्रधान एक विधान को स्थापित किया। ये आज उनका बलिदान बेकार नहीं गया। आज भारत फिर से सांस्कृत राष्ट्रवाद का केंद्र बन करके दिनकर की इस कविता को मोदी पूरा कर रहे हैं।
1: बरौनी जंक्शन पर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कवि गुरु एक्सप्रेस से लगभग 25 लाख रुपए की हेरोइन बरामद।

0: की गई। इस मामले में दो महिलाओं सहित चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। खोदावंतपुर प्रखंड में इस वर्ष खरीफ मौसम के दौरान 1250.30 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग ने पंचायत बार लक्ष्य तय करते हुए किसानों को समय पर बिचड़ा तैयार करने और वैज्ञानिक पद्धति से धान की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA की जिला इकाई ने प्रख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर BC राय की जयंती डॉक्टर्स डे के रूप में मनाई। कार्यक्रम में बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सत प्रकाश, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार और IMA के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चिकित्सकों को सम्मानित किया गया तथा डॉक्टर BC राय के योगदान को याद किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई ने पोखरिया स्थित चित्रगुप्त सामुदायिक भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती मनाई। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय जनता दल ने कंकोल स्थित प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने की। इस अवसर पर पूर्व MLC डॉक्टर तनवीर हसन सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरौनी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दो नाबालिग सगी बहनों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। दोनों बहनें परिवार से बिछड़ गई थी। जिले में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वर्षा होने से मौसम सुहावना हो गया है। मकई सहित खरीफ की अन्य फसलों को लाभ पहुंचा है, जिससे किसानों में खुशी है। 4 जुलाई को जिले के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। इधर जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत राज्य से प्रखंड स्तर तक अधिकारियों ने सामुदायिक संस्थाओं का भ्रमण कर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया। अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। और मधुरापुर दक्षिण टोला में अग्निकांड से प्रभावित 54 परिवारों के बैंक खातों में 8,000 रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बेगूसराय की सुप्रिया राज ने स्वर्ण पदक और साक्षी राज ने कांस्य पदक जीता है। सुप्रिया राज का चयन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242। सुनो ना।
3: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
4: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
1: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनहरी में, गायक कलाकार रंजीत कुमार पाठक की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म चलते चलते का शीर्षक गीत। इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने। जतिन ललित का संगीत है और इसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म धड़कन से। इस गीत को गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण ने। संगीत है नदीम और श्रवण का और इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

0: जावेद अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं और इसे गाया है कुमार सानू ने।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हंगामा से। बाबुल सुप्रियो की आवाज है, समीर ने इसके बोल लिखे हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है का शीर्षक गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें थी, नदीम श्रवण का संगीत था, समीर ने इसके बोल लिखे थे। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म जानवर से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और साथियों ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए कच्चे धागे फिल्म का ये गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया है नुसरत फतेह अली खान ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, आवाजें हैं अलका याग्निक और हंसराज हंस की।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
2: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
3: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
4: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शुभांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
5: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
6: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं

0: तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
4: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70,00,000 पौधे लगाने के अभियान का

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی. کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں. آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 دنوں میں ملک کے مختلف شمالی اور جنوبی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگھم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا 3rd میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامل ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. آج دوپہر جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری کو اجاگر کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت انڈونیشیا مضبوط کلیدی شراکت داری پر یہ کہتے ہوئے زور دیا کہ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کی خوشحالی میں تعاون حاصل ہوگا بلکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام بھی مضبوط ہوگا. جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات صدیوں پرانے ہیں اور دونوں مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد اور مستقبل کا ایک مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ترقی، امن و استحکام اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے. وزیر اعظم نے دفاع، بحری سلامتی، تجارت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اہم معدنیات میں مزید اشتراک پر زور دیا. انہوں نے یو پی آئی سمیت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے سلسلے میں اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائے جانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں.
2: آتنکواد جیسے وشیوں پر بھارت اور انڈونیشیا دونوں کی ایک رائے رہی ہے. پچھلے ورش پہلگام میں جب جدھنیہ آتنکوادی حملہ ہوا انڈونیشیا تب بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا. میں اس کے لیے راشٹرپتی پربوو اور آپ سبھی کا آبھار ویکت کرتا ہوں. ہمارے دونوں دیش کاؤنٹر ٹیررزم پر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مادھیم سے ساتھ کام کر رہے ہیں.
0: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت 1 ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے.
2: آج بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی گروتھ کو ڈرائیو کرنے میں بڑی بھومیکا نبھا رہی ہے. جب دنیا پر کورونا کا اتنا بڑا سنکٹ آیا تو بھی بھارت کی ارتھ ویوستھا ٹھپ نہیں پڑی. جب ویسٹ ایشیا کا اتنا بڑا سنکٹ چل رہا تھا تب بھی بھارت کی اکانومی تھمی نہیں. بھارت کی گروتھ میں جو سپیڈ اور سکیل ہے اس کو ایک لائن میں بتانا ہو تو میں کہوں گا 1.4 بلین ایسپیریشنز ان موشن.
0: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے، انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا. وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا.
3: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو ان کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور آج ان کے آتمیتا بھرے نمنترن پر انڈونیشیا کی یاترا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है, जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजिला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क राबते को भी उजागर किया, जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीक़ेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस सम्त में मस्बत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
4: ये रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की सम्त में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की, ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मंसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ्त का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोड़े खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मेपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
6: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सुपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इशारिये में 0.3 और स्मॉल कैप 100 इशारिये में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकल व हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
7: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो नाटक। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पूर्व प्रसारित नाटक। शीर्षक है मेरी खामोशी।

0: साक्षी। लेखिका है श्रीमती दीपशिखा और प्रस्तुतकर्ता है अरुण कुमार पासवान।
1: चाय, गरम चाय।

0: 拜。
1: अरे मिलन, तुम
2: अरे परेश, कैसा है यार? गजब का इंतजार किया, इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हो पाई। कहाँ चल रहा है?
1: मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम कहाँ जाओगे?
2: मैं भी दिल्ली ही चलूंगा। अच्छा। मैं तो वही रहता हूँ ना।
1: ओहो, दिल्ली में ही रहते हो, क्या चल रहा है आजकल?
2: यार तुम तो जानते ही हो, आजकल कितना भी पढ़ लिख लो, नौकरी पाना तो मुश्किल काम है। पर इससे पहले कि मुश्किलों से जूझना पड़े, मैंने ठोस निर्णय लेकर नौकरी की सोच को तिलांजलि दी।
1: अच्छा, फिर क्या दिल्ली में राजनीति कर रहे हो?
2: अरे यार, कैसे टफ सब्जेक्ट का नाम ले लिया। राजनीति में तो मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की।
1: अरे सारी बातें यूं ही टालता जा रहा है, फिर क्या दिल्ली में घूम घूम कर जेबे काटता है?
2: एक तरह से कहो तो जेबे ही काटता हूँ, पर घूम घूम कर नहीं, गोल मार्केट में काउंटर खोल कर।
1: काउंटर खोल कर जेबे काटता है? क्यों, दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं जो जेबे कटाने में इंटरेस्टेड होते हैं?
2: अमा यार, तुम रह गए सीधे के सीधे।
1: क्यों,
2: दिल्ली क्या, कहाँ ऐसे लोग नहीं जिन्हें जेब कटाने का शौक नहीं?
1: यार अब पहेली बुझाना छोड़ो भी।
2: यह पहेली नहीं है परेश, मैं सच कह रहा हूँ। दरअसल मैंने वहाँ एक मशीनरी पार्ट पुर्जे की दुकान खोल रखी है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं और अपनी जेब खाली करा के जाते हैं।
1: अबे घोचू, तो तू इसे पॉकेट मारी कहता है?
2: अगर तुम नहीं कहते तो चलो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ, लेकिन यार ग्राहक तो यही समझते हैं।
1: ओहो अच्छा, बाय द वे, उन्हें तुम्हारी सूरत से तो धोखा नहीं होता?
2: ऑफ कोर्स, यही बात होगी, क्योंकि अपनी सूरत से तो तुमने अनुभव किया ही होगा।
1: ओहो।

0: paper, magazine, paper, magazine, novel, novel, चुटकुले पहेलियां, जीजा साली की छेड़छाड़, paper, magazine.
1: ओ paper वाले, इधर आना.
0: बोलो जी साहब, क्या दूं? Paper, magazine.
2: आमा यार, छोड़ paper, magazine. इसे जीजा साली की छेड़छाड़ वाली एक किताब दे दे, रास्ते भर पढ़ता रहेगा.
0: आपसे छेड़छाड़ छोड़ो साहब जी, धंधे का वक्त है, कुछ लेना है तो बोलो, या फिर मैं लाइन दूं.
1: ठीक है, कोई नया नॉवेल दो.
0: ये लो साहब, मेरी खामोशी काफी चला है आजकल, 10-20 रोज की खपत है.
1: किसका लिखा है?
0: पढ़ के देख लो साहब, मुझे तो 15-20 रुपए छुट्टे और छुट्टी चाहिए.
1: ओह अच्छा अच्छा, ये लो, ये 10 और ये 5-15. ठीक
0: ठीक है साहब. पेपर मैगजीन, पेपर मैगजीन, पेपर मैगजीन.
2: और बता परेश, कैसा चल रहा है?
1: सब ठीक ठाक है, तू अपने बता. बीवी बच्चे साथ ही रहते हैं?
2: नहीं यार, जीवन की व्यस्तता में सब कुछ बदल जाता है. बीवी बच्चे लखनऊ में हैं, वहीं मैंने एक घर भी बना लिया है.
1: रहते दिल्ली में हो, घर लखनऊ में बनाया और बीवी बच्चों को वहीं रख दिया, क्यों?
2: यार जब बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके अनुसार सब कुछ करना पड़ता है. दरअसल पहले मैं लखनऊ में ही बिजनेस कर रहा था, बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी. अब अपनी दुकान तो दिल्ली आ गई, मगर बीवी ने बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं स्वीकारा. बस ये लोग वही.

0: के, तब से फिर। अरे तुम बताओ भाभी कैसी है, कितने नंबर लगाए?
1: कुछ नहीं मालूम यार।
0: कुछ नहीं मालूम, क्या मतलब?
1: हाँ मिलन, तंगी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, फिर पता नहीं कहाँ चली गई वो, बहुत तलाशा, बेकार रहा। अब तो वो बात भूलने में ही अपना भला मानता हूँ, पता नहीं कहीं है भी या।
0: कब कब हुआ ऐसा?
1: यही कोई 10 वर्ष हो गए।
0: फिर कोई दूसरा घर नहीं बसाया?
1: अरे एक घर तो अपने हाथों उजाड़ लिया, अब दूसरा घर क्या बसाऊं?
0: सॉरी, शायद तुम दुखी हो रहे हो। अच्छा छोड़ो, फिर कभी।
1: मैं जरा नॉवेल देखता हूँ।
0: फिर मैं सो।
1: हाँ ठीक। सीमा सक्सेना, ये तो कोई नई राइटर लगती है, तस्वीर भी नहीं छपाई। हो सकता है मेरी कहानी में आपको अपनी बात मिल जाए, पर यकीन मानिए मैंने आपकी कहानी ना सुनी ना जानी है। ये मेरी कहानी है, सिर्फ मेरी कहानी, मेरे दुखों की कहानी, उन दुखों की जिन्हें मैं सह न सकी। मेरी तो आदत है, पहले मैं सहने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल वही बात, वो भी तो यही कहा करती थी हर बार आंखों में आंसू भरकर, उसने भी तो यही कहा था।
2: अब इसमें मेरा क्या कसूर है?
3: तो क्या मेरा कसूर है? मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई पूरी की, अच्छे अंकों से पास किया, पर नौकरी मिलती नहीं तो मैं क्या करूं? किसी से छीन लूं, किसी का गला दबा कर ले लूं?
2: मैंने कभी कोई शिकायत की?
3: शिकायत? अरे तू क्या शिकायत करेगी, किस हक से शिकायत करेगी तू? वो तेरा बाप है ना, तेरा धोखेबाज बाप, वो भी शिकायत नहीं कर सकता, एक बात नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने मेरे साथ छल किया है।
2: तो उनसे ही कहिए ना, मैं नहीं सुनना चाहती।
3: इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुमसे, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं सुनना चाहती, और मैं वही बात बोलना चाहता हूँ जो तुम नहीं सुनना चाहती।
2: लेकिन क्यों?
3: इसलिए कि यही हुआ है मेरे भी साथ। तुम्हारे बाप ने मुझे सुनहरे सपने दिखाए, झूठ कहा मुझसे कि मुझे नौकरी दिला देगा, नौकरी खोजने में जो पैसे लगेंगे उनका इंतजाम करेगा, पर क्या किया उसने?
2: मैंने तो नहीं कहा था, फिर अगर उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे भी उनसे शिकायत है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ?
3: तुम जाकर उनसे कह सकती हो कि उसने मेरी जिंदगी खराब की है, और मैं भी उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा, उसकी बेटी का जीना हराम कर दूंगा, समझी? और जब उसे पता चलेगा तो अपनी बेटी के लिए उसे दर्द होगा, और तब उसे अपने किए पर पछताना होगा।
2: तो एक बारगी मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते?
3: एक बारगी? इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं। और अभी से टसुए क्या बहा रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं।
2: कुछ कर दीजिए तो अच्छा है, पर ये दिन रात के बक बक से मैं तंग आ चुकी हूँ, कितना रोकूं अपने आंसुओं को, कितना रोकूं? मेरी तो आदत है, पहले मैं सहने की कोशिश करती हूँ।
1: हाँ, यही तो कहा करती थी वो, बिल्कुल उसी की बात है।
0: ए, परेश, क्या हुआ, किसकी बात?
1: नहीं तो किसी की तो नहीं।
0: कोई सपना देख रहे थे क्या?
1: हाँ, शायद सपना ही था।
0: चलो सो जाओ यार, गाड़ी काफी आगे निकल चुकी है।
1: हाँ, सोने की कोशिश करता हूँ।

0: परेश उठो उठो, स्टेशन आ गया है।
1: कौन सा स्टेशन?
0: नई दिल्ली।
1: हाँ सचमुच?
0: क्यों विश्वास नहीं होता? अरे भाई तुम जितनी गहरी नींद में सोए रहे ट्रेन उतनी ही रफ्तार में चलती रही। अच्छा सुनो, बड़े दिनों पर मिले हो, कितने दिन रहोगे दिल्ली में? कभी आओ हमारी दुकान की तरफ, वैसे रेजिडेंस भी बगल में ही है।
1: ऐसे नहीं आऊंगा, बुलाना ही है तो लखनऊ बुलाओ, भाभी और भतीजे भतीजे से भी मिल लूंगा।
0: देखो बम्बईया भाषा मत बोलो, हाँ दिल्ली में हो दिल्ली की बातें करो। वैसे भी लखनऊ में किसी बैचलर को नहीं बुलाता। ये रख लो मेरा कार्ड।
1: थैंक यू। वैसे मैं सप्ताह भर यहाँ रहूंगा, किसी दिन आ जाऊंगा।
0: पर यार ये तो बताया ही नहीं, दिल्ली के सिलसिले में आना हुआ।
1: अरे यार अब सुबह सुबह तुमसे क्या झूठ बोलूं?
0: क्यों?
1: जब होश आया तो लगा कि मैंने नाहक ही प्रीति को यातनाएं दी, लेकिन तब तक तो वो काफी दूर जा चुकी थी। पर आज भी मुझे लगता है कि वो एक दिन मुझे मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है यार, बस इसी तमन्ना में हर महीने किसी एक शहर में 4-6 दिनों के लिए तलाश करता हूँ उसे।
2: सोनी बेटे आप क्या कर रहे हैं?
3: मम्मी आपको तो मालूम है कि मेरे स्कूल में पढ़ने वालों को सिर्फ एक ही काम करते रहना है, होमवर्क।
2: तो अच्छा है बेटे, इसमें खींचने की क्या बात, ज्यादा पढ़ेंगी तो ज्यादा ज्ञान होगा ना।
3: मम्मी मेरी समझ में एक बात नहीं आती।
2: वो क्या?
3: सारी बातों में तो आप लोग ज्यादा पर रोक लगाती हैं, जैसे कि ज्यादा खाना ठीक नहीं, ज्यादा सोना ठीक नहीं, ज्यादा खेलना ठीक नहीं, पर पढ़ने के मामले में ये नियम कैसे उलट जाता है?
2: आप बड़ी सयानी हो गई हैं, चुपचाप अपना होमवर्क पूरा कीजिए।
4: मैं जानती हूँ, मम्मी जिस बात का जवाब नहीं जानती उसे टाल देती हैं।
2: वाह दादी अम्मा, फिर तो आप जरूर जानती होंगी कि पढ़ने में ज्यादा पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती।
4: बिल्कुल जानती हूँ, इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि बच्चे ज्यादा पढ़ने से खुद मना करते हैं।
2: इसलिए आप बिना मना किए हुए ही किताब समेट देती हैं, क्यों?
4: यही तो गड़बड़ है मम्मी, आप सिर्फ राइम्स और टेबल्स को पढ़ाई कहती हैं, मेरी स्केचिंग को खेल समझती हैं।
3: खूब स्केचिंग कर ले बाबू, जब मेरे क्लास में आ जाएगी ना तो स्केचिंग के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा।
4: मेरा तो जी चाहता है कि मैं कभी भारी बस्ते के चक्कर में पढूं ही नहीं।
3: तो क्या सब दिन स्केचिंग ही करती रहेगी?
4: नहीं, जब स्केचिंग पूरी तरह जान लूंगी तो पेंटिंग भी सीखूंगी।
2: अरे तो सिर्फ यही सब सोचती रहती है?
4: इसमें बुरा क्या है मम्मी? आप ही कहती हैं कि कलाकारों को बहुत सम्मान मिलता है, तो क्यों ना मैं भी कलाकार बन जाऊं?
3: ठीक ही तो है मम्मी, आप उपन्यासकार हैं या चित्रकार बनेगी, मैं पढ़ लिख कर पत्रकार बन जाऊंगी, फिर आपके उपन्यास और रितु की चित्रकारी की रिपोर्ट लिखूंगी।
4: पर देखना सोनी दीदी, रिपोर्ट लिखने में ईमानदारी रखना, ऐसा नहीं कि मम्मी

0: सोचते भी, मगर
1: ओ तो तुम्हें ये भी मालूम हो गया?
0: हाँ, और मुझे ये भी मालूम, सिंहेश्वरी के बिना मेरा जीवन कितना सूना हो गया है रे। पहले पहले पहले ऐसा कभी नहीं महसूस किया था जैसा अब महसूस कर रहा हूं। अगर यार, अगर मेरा बस चलता तो सचमुच मैं रोक लेता सिंहेश्वरी को यार, रोक लेता।
2: चलो सिंहेश्वरी पर नहीं चला तो कम से कम अपने पर तो बस चलाओ भोलू। देख, तुम जानते नहीं यार कि तुम्हारे इस तरह कटे कटे रहने से लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहने लगे हैं। मैं तुम्हारा मित्र हूं ना भोलू, अच्छा नहीं लगता है भोलू।
0: लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, इसे जानना छोड़ दिया है यार। तू भी सुनना छोड़ दे। वैसे भी अब मुझे अपने जीवन के प्रति आकर्षण तो रह भी नहीं गया है। सोचा था शहर जाकर बहुत कमाऊंगा, लेकिन अब वो भी इच्छा मर गई। अब तो बस मेरा मरना ही बाकी रह गया है। अब तो मेरा मरना ही बाकी रह गया है यार, मरना ही बाकी।

0: देखो सिंहेश्वरी, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये अमेरिका है। यहां तो कुत्ते और बिल्ली भी सलीके से रहते हैं, लेकिन तुम जिस बेतरतीब ढंग से घर में उछला कूदा करती हो, तुम्हारी मालकिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सभ्य लड़की की तरह रहना सीखो।
1: अजी ये क्या सुधरेगी, महीने भर में इसने मुझे इतना परेशान कर दिया है जितना मैं 50 साल में नहीं हुई। इधर की चीजें उधर रख देती है और उधर की चीजें इधर, समझाओ तो बस हंसकर सारी बातें भुला जाती है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि गांव के चूहे चूहियों को उठाकर नहीं लाना है, मकान ही गंदा करेंगे, पर मेरी सुनता ही कौन है, आपने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया।
0: अरे देवसुता, इस तरह नाराज होने से काम भी नहीं चलेगा। अब विदेश की संस्कृति को नहीं जानती है तो जान जाएगी क्या सिंहेश्वरी, अब तो कोई गलती नहीं करोगी?
2: नहीं, नहीं, नहीं मालिक, ये लीजिए, मैं कान पकड़ कर कहती हूँ कि अब से कोई भूल नहीं होगी।
0: ठीक है,
1: खाक भूल नहीं करेगी। अब तो इसे किसी भी तरह से गांव भेजना भी मुश्किल है, 1000-2000 की बात भी तो नहीं है।

0: क्या बात है भोलू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है?
1: मंटू, यार तुम्हारे कहने पर मैंने सिंहेश्वरी को बुलाने की बहुत कोशिश की, जैसे तैसे, लेकिन कल एक अजीब सा डरावना स्वप्न देखा।
0: सपना?
1: हाँ यार, देखा सिंहेश्वरी प्रताप बाबू की हवेली से भाग गई है और अमेरिका की सड़कों पर अकेली बदहवास से भटक रही है। किसी अपने आदमी की तलाश में, कभी इधर कभी उधर, वो परेशान है यार। 5 रोज से उसने खाया पिया नहीं। यार मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा यार, ऐसा सपना नहीं देखा।
0: अरे सपना तो सपना होता है भोलू, इस बात के लिए इतना परेशान क्या होना है? अब फिर तुम ही सोचो कि सिंहेश्वरी प्रताप बाबू की हवेली से क्यों भागेगी? कौन सा दुख भला उन्हें मिलेगा जो वह भागने की बात सोचेगी?
1: सो तो मैं नहीं कह सकता यार, सिंहेश्वरी के गए साल भर हो गए और आज तक मैंने कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा। न जाने क्यों मन बहुत बहुत बहुत घबरा रहा है यार, बहुत घबरा रहा है।
0: संभालो भोलू, सबसे पहले तुम अपने आप को संभालो। इस बात को तुम समझते क्यों नहीं हो कि सपना भी कभी सच नहीं होता? अरे सपना तो सपना है, पानी का बुलबुला, उठा और फूट गया, उसकी अपनी कोई दुनिया नहीं होती भोलू। ये बात तुम किसी से कहना भी नहीं, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, पागल, और किसी पागल खाने में डाल आएंगे।
1: पागल पागल पागल पागल पागल, वो भी कहाँ हो पा रहा हूँ यार, वो भी कहाँ हो पा रहा हूँ। हो जाता तो गांव भर में हका हका कर कहता कि सिंहेश्वरी मेरी थी, सिंहेश्वरी मेरी थी, सिंहेश्वरी मेरी थी, उसे पटेल काका ने प्रताप बाबू के हाथ बेच दिया। मंटू यार, मनाओ कि मैं पागल हो जाऊं यार, मैं पागल हो जाऊं, पागल हो जाऊं यार।
0: संभालो, संभालो, संभालो, संभालो, संभालो, संभालो।

0: नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे, बहुत बर्दाश्त किया। ठहर ठहर, मैं तुम्हें अब बताती हूँ। क्यों री, क्या समझती है अपने आप को? क्यों किया ऐसा? क्यों, क्या समझती है अपने आप को, बता ना।
1: छोड़ दीजिए मालकिन, मालकिन छोड़ दीजिए, अब ये गलती कभी नहीं करूंगी।
0: नहीं ना ना, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हें कमरा दिया था रहने के लिए, और तुमने तुमने ये क्या किया? कमरे की दीवारों पर तोते, मैना और हिरणों की तस्वीरें बना रखी, कहीं झरना तो कहीं बॉक्सिंग। वाह, क्या समझ के क्या रखा है तुमने मेरे घर को? घर को जंगल समझ रखा है क्या?
1: छोड़ दीजिए मालकिन, मैं
0: छोड़ दीजिए मालकिन,
1: मैं सारी तस्वीरें मिटा दूंगी।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताकि मेरी दीवारें और भी गंदी हो जाएं। क्यों, शैतान कहीं की, मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के फूल लगाए थे, वहां तुमने जाने कहां से बाजारों फूल लाकर जमा दिए। यहां तक तो मैंने फिर भी तुम्हें बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नहीं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त कर सकती। आने दो, आने दो, अब तुम्हारे मालिक ही तुम्हें बचा सकते हैं।
1: चोटी छोड़ दीजिए मालकिन, सर में दर्द होने लगा।
0: दर्द, तुमने साल भर से जो मेरे माथे में दर्द कर रखा है, उसका क्या ख्याल है उसका? अब तुम इस घर में रहोगी या मैं? कल तुम्हारे मालिक लौटते हैं ना, तब मैं तुम्हारी व्यवस्था करवाती हूँ। ठहर जा।
1: आप मुझ पर क्यों इतना गुस्साती, क्यों इतना गुस्साती है? मैं गांव के झरने और वृक्षों की छाया के नीचे पली हूँ, चिड़ियों का कलरव मुझे जीवन देता है। मैं जिस कमरे में रह रही हूँ, वहां तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तभी तो

0: तब भी तो मैंने कमरे की दीवारों पर झरने, वृक्षों और चिड़ियों के चित्र बना दिए हैं। जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने गांव में हूँ, मैं अपने गांव में हूँ, मैं अपने गांव में हूँ।
1: रात के 12 बज रहे हैं, मालकिन सो रही है, मालिक भी सो रहे हैं, बस यही समय है कि मैं अपने भोलू के नाम चिट्ठी लिख लूं। और विशु ने कहा ही है कि वो चिट्ठी डाक में गिराएगा, ज़रूर डालाएगा वो, क्योंकि वो भी तो इस घर का नौकर ही है। एक नौकर ही नौकर के दुख को ज़रूर जानेगा। और फिर विशु ने उस दिन देखा ही था कि मालकिन मुझे इस तरह से पीट रही थी। महीने भर की तो पुरानी बात है, लेकिन कैसे लिखूं पत्र? गांव में रहकर ज़्यादा पढ़ लिख भी तो नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, 5 अक्षर तो लिख ही लूँगी। चलो जल्दी से खत लिख लो। भोलू, अब तक मैं तुम्हारे बिना जी गई, लेकिन लगता है अब नहीं जी सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ जिस झरने के नीचे और जिस वृक्ष की छाया में बैठा करती थी, वो सारी चीज़ें मुझसे छीन गई हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं 1 महीना और बचना चाहूँगी। मुझे जैसे भी हो यहाँ से निकालो, मैं आग में जलकर नहीं मरना चाहती। तुम मुझे इस पते पर लौटती डाक से उत्तर दो, मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूँगी। तुम ये निश्चित समझो कि महीने भर के बाद भी अगर तुम्हारा जवाब नहीं मिला, तो तुम ये समझना कि मैं इस धरती पर नहीं हूँ, और इसके बाद मेरे बारे में तुम खोज खबर भी नहीं लेना, क्योंकि तब तक मैं धरती पर नहीं होंगी। मैंने अपने मरने का इंतज़ाम कर लिया है, एक पल में सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन महीने भर में मैं अपनी मालकिन की प्रताड़ना सहती रहूंगी, मरती रहूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी सिंहेश्वरी।

0: प्रणाम डाकिया काका, जंगल की ओर किसको डाक पहुंचाने आ रहे हैं?
1: अरे भोलू, तुम्हें ही यह चिट्ठी देने आया हूँ। क्या कहूँ, तुम्हारे नाम से यह चिट्ठी तो महीने भर पहले आया था।
0: अच्छा,
1: लेकिन देखो ना, यह कहीं चिट्ठी इधर उधर रखा गया था, मिल नहीं रहा था। अब नहीं मिल रहा था तो तुम्हें क्या कहता? आज मिला है, फाइल में दवा पड़ा था। लो बेटा, रख लो, अमेरिका से आया है यह पत्र।
0: अमेरिका से?
1: हाँ भोलू, अमेरिका से आया है, पढ़ लेना, चलता हूँ।
0: जी जी जी।
2: भोलू, अब तक मैं तुम्हारे बिना जी गई, लेकिन लगता है अब नहीं जी सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ जिस झरने के नीचे और जिस वृक्ष की छाया में बैठा करती थी, वो सारी चीजें मुझसे छिन गई है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक महीना और बचना चाहूंगी। मुझे जैसे भी हो यहाँ से निकालो, मैं आग में जलकर नहीं मरना चाहती। तो मुझे इस पते पर लौटते डाक से उत्तर दो, मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगी। तुम ये निश्चित समझो कि महीने भर के बाद भी नहीं मिला।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो नाटक में एक पूर्व प्रसारित नाटक, शीर्षक थी मेरी ख्वामिशी। लेखिका थी श्रीमती दीपशिखा और प्रस्तुतकर्ता थे अरुण कुमार पासवान। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजी बिहार।

0: लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गूंजे बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामीण लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गूंजे बिहार।
1: श्रोताओं नमस्कार, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार के आज के इस अंक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ही दोस्त डॉक्टर विजय कुमार पिछू।

हर देश का अपना एक ऋतु चक्र होता है। भारत इसका अपवाद नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि अपने देश का ऋतु चक्र अपेक्षाकृत अधिक वैविध्यपूर्ण और विज्ञान सम्मत है। हर 2 महीने पर एक ऋतु का विधान किया गया है, जैसे चैत वैसाख में बसंत, जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म, सावन भादो में वर्षा, आश्विन कार्तिक में शरद, अगहन पौष में हेमंत और माघ फागुन में शिशिर। वसंत की तरह ही कामोद्दीपक होती है बरसात। संयोग काल में प्रिय के सानिध्य से कामोद्दीपकता की संतुष्टि का अवसर मिलता है। कार्तिक से आश्विन तक वर्णित 12 मासा के बारे में भी यही बात कही जा सकती है।

जायसी की अवधि में रचे महाकाव्य पद्मावत में देखने को मिलता है। इससे एक बात स्पष्ट है कि बारहमासा भले ही अलग अलग महीने से शुरू हो, मगर इसके पीछे कारण एक ही है और वो है मनोदैहिक विज्ञान।

बारहमासा में विशेष रूप से दो बातों की अभिव्यक्ति होती है, परिवेशगत वर्णन जिसकी चर्चा मेघ दूतम में है, योग जन्य जो पद्मावत में वर्णित है, सावन में झूला वर्णन, कजरी रोपनी और विषहरी पूजन आदि। प्रस्तुत बारहमासा में वियोगिनी पर्व त्योहार और पूजा पाठ में लगी है, उन्हें अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। इस वियोग वर्णन में आत्मकेंद्रिकता कम और आत्म प्रसार अधिक है। इतना ही नहीं, ये वियोगिनी पूर्वी भारत की धार्मिक सांस्कृतिक चेतना की स्वयंभू राजदूत खुद बनी हुई है।

संवेदना की तरलता, पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता, अनुभूति की सांद्रता, भाषा की सहजता और शैली की चारुता, यही तो है बारहमासा गीतों की विभेदक विशेषता।

तो श्रोता भाइयों बहनों, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजे बिहार के आज के इस अंक को अब यही विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम से अपने इस दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजे बिहार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजे बिहार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। पेश है गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त महताब। कार्यक्रम के आगाज में आइए आपको एक बड़ी खूबसूरत गजल सुनाता हूं। ये गजल कफील अजहर अमरावी का लिखा हुआ है। रात भर चांद की गलियों में फिराती है मुझे जिंदगी, कितने हसी ख्वाब दिखाती है मुझे। रात भर चांद की गलियों में फिराती है मुझे जिंदगी, कितने हसी ख्वाब दिखाती है मुझे। इन दिनों इश्क की फुर्सत ही नहीं है वरना, इन दिनों इश्क की फुर्सत ही नहीं है वरना, उस दरीचे की उदासी तो बुलाती है मुझे। तोड़ देता हूँ कि ये भी कहीं धोखा ही ना हो, तोड़ देता हूँ कि ये भी कहीं धोखा ही ना हो, जाम में जब तेरी सूरत नजर आती है मुझे। दिन इसी फर्क के जंगल में गुजर जाता है, दिन इसी फर्क के जंगल में गुजर जाता है, रात यादों का वही जहर पिलाती है मुझे। साथ जिस रोज से छूटा है किसी का आजर, साथ किसी रोज छूटा है किसी का आजर, जैसे कमरे की हर चीज डराती है मुझे। रात भर चांद की गलियों में फिराती है मुझे जिंदगी, कितने हसी ख्वाब दिखाती है मुझे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ खूबसूरत फिल्मी गजलें आप सभी को सुनवा रहे हैं। अगली गजल आप सभी के पेशे खिदमत है, कैफी आजमी की लिखी ये खूबसूरत गजल बहुत लोकप्रिय रही है। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। तू अपने दिल की जबां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह दिल बेकरार है कि नहीं। वो पल कि जिसमें मोहब्बत जवां होती है, वो पल कि जिसमें मोहब्बत जवां होती है, उस एक पल का तुझे इंतज़ार है कि नहीं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म अर्थ का ये गज़ल। इस गज़ल को गाया था जगजीत सिंह ने। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगली गज़ल, फिल्म उमराव जान से।

श्रोताओं, रात की इस तन्हाई में हम आज खूबसूरत फिल्मी गज़लें सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आइए इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए अगली गज़ल आपको सुनाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गज़ल हमने लिया है फिल्म रज़िया सुल्तान से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल फिल्म आवारगी से। इस गीत को, इस गज़ल को गाया है ग़ुलाम अली ने, और इसी के साथ संपन्न होता है गीत गज़ल कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम की प्रस्तुति के बारे में अगर आप हमें लिखना चाहें तो ज़रूर हमें लिखिए। हमें आप ख़त और ईमेल के द्वारा अपने सुझाव और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है आप हमें भेज सकते हैं। इस सफ़र में मैं था आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त महताब।

इसी गीत के साथ गीत गजल कार्यक्रम भावगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: కుమారుని. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है.
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास. आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है. श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई. श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है. बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा. श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया. श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया.

परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।